ज़िंदगी के मामलात में, यानी मिसाल के तौर पर आप बाज़ का किसी से मशवरा लेते हैं तो वो अहले फ़न होता है या अहले इल्म होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई ख़ास बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो हर किसी से मशवरा नहीं लेंगे, आप उसी से लेंगे जिसके पास इसकी इन्फॉर्मेशन हो। आप किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप उस कोर्स से रिलेटेड किसी प्रोफेसर से टीचर से पूछेंगे कि ये कोर्स कहाँ से किया जाए जो अच्छा हो। इसी तरह जब हम अपनी ज़िंदगियों के मामलों में इतने गौर व फिक्र करते हैं और इतनी जस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें, तो हम दीन के मामले में इतने संजीदा नहीं होते हैं कि हम अब इसके लिए किससे बात करें, किससे पूछें, कितनी जस्तजू करें कि हमें

तो इमाम तक पहुंचने के लिए पहले हमें इमाम के मुकाबले वालों को भी देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो हमें इमाम के मुकाबले से रोक रही है, इमाम के सामने इमाम के साथ चलने से रोक रही है। ऐसा नहीं होगा कि आप इमाम के लिए तैयार हों और बड़े आराम से आप इमाम तक पहुंच जाएं और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो मूवमेंट आइम्मा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आई हैं वो मूवमेंट आसान मूवमेंट नहीं थी, वो मूवमेंट बहुत ख़तरनाक मूवमेंट थी और सबसे बड़ी उस मूवमेंट को चलाने वाला इब्लीस है, क्योंकि इब्लीस जो है वो आइम्मा अलैहिस्सलाम के अंबिया के मुकाबले में वही आया है, चाहे उसने अपने सामने वालों की शक्लें बदली हैं। मिसाल के तौर पर अगर जो है वो हाबील काबील को आपस में लड़वाया है तो किसने लड़वाया? इब्लीस आया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर एक खुदा का एक पसंदीदा है, एक कुर्बानी कबूल हो रही है और एक कुर्बानी कबूल नहीं होगी, तो वहाँ आपस में इनाद और हसद किसने पैदा किया? इब्लीस ने पैदा किया। इसी तरह ये मूवमेंट इब्लीस की बढ़ती गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन का आना, फिर जो है वो कहीं शद्दाद का आना, कहीं नमरूद का आना नबियों के मुकाबले में। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो शुरू से चलती हुई आ रही है और वो आती आती जो है वो पहुंची है मदीना तक, और मदीना में कि जब आखिरी खुदा ने अपने नबी को भेजा है तो दूसरी तरफ से भी उतनी ही फोर्स से वो मूवमेंट सामने आई है, जो कि कुफारे मक्का की सूरत में आई है, और उन्होंने पहले दिन ही से रसूल खुदा को अज़ियत देना शुरू कर दी, रसूल खुदा को तकलीफ़ें दी। तो ये अंडरस्टैंड करना कि अब कितने लोग थे जो रसूल के साथ दे पाए, कितने लोगों ने रसूल का साथ दिया, और फिर कितनी मुश्किलात बर्दाश्त की कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा, जब आप ख़ुद देखें कि जब ख़ुद पैगंबर अकरम ने जब ये आहिस्ता आहिस्ता दीन का मैसेज देना शुरू किया तो ये एकदम मुकाबले में आए, क्योंकि उनकी एक तो ख्वाहिशात, उनके मामलात रुकते थे, वो जिन बुतों की पूजा करते थे उनको उससे डिस्टर्बेंस होती थी, इसलिए उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हज़रत अबू तालिब से उन्होंने ये कहा कि आप इनसे कहें कि जो करना है करें, हमारे बुतों को हमारे खुदाओं को ना छेड़ें, यानी इनको इनके बारे में कुछ ना कहें, इनको कोई कोई जगह चाहिए, इनको बादशाह चाहिए, कुछ भी चाहिए हम देने को तैयार हैं, मगर हमारे खुदाओं को ना छेड़ें। तो सारा सबसे बड़ा मसला किसका है? ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तौहीद का है। दूसरी जितनी भी मूवमेंट हैं वो सारी तौहीद के मुकाबले में, और कुरान जो है जब भी किसी नबी का जिक्र कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने इसको फलाने ग्रोह में भेजा, हमने इसको फलानी कौम में भेजा, तो वहाँ पर जो पहला ही काम नबी ने जाके किया वो क्या किया है? एक खुदा की इबादत करो, एक अल्लाह को पहचानो। अब आज अगर हम अपने दौर में देखें तो आज हम लोगों को जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो किस तरफ किया जा रहा है? हमसे ज़ाहिरन ये नहीं कहा जाता कि बुतों की पूजा करो, हमसे ज़ाहिरन ये नहीं कहा जाता कि खुदा का इनकार करो, फ्रंट पे नहीं कहते, लेकिन हमारे सिस्टम को, हमारे अंदर, हमारे कल्चर को, हमारी फैमिली स्ट्रक्चर को, सब को उस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं जो कि तौहीद का सिस्टम है। अब आपको डायरेक्ट नहीं कह रहे कि बुतों की पूजा करो, नहीं, खुदा की जो असल वाजिबात है उससे दूर कर रहे हैं, यानी फिर कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? लामोहाला तौर पर आपको बग़ैर महसूस किए तरीके से बुतों, बुत है क्या, यानी तुमने अपने लिए खुदा के सिवा माबूद बना लिए, यानी वो के जो खुद साख्ता माबूद हैं, वो जिसके लिए तुम अपने आप को खुदा से दूर कर रहे हो। तो आज हमारे लिए जो दुनिया ने जो नया सिस्टम, ये सिस्टम पुराना है, शक्ल इसकी नहीं है, ये वही फिरौनियत का सिस्टम है कि जो कॉर्पोरेट सिस्टम है, जो मल्टीकल्चरल सिस्टम है, जो ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम है, इसमें दीन कोई नहीं है, इसमें असल वो हैं जो ये चाहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुसलमान हो, आप हिंदू हो, आप क्रिश्चियन हो, दे डोंट केयर, आपने वो करना है जो ये चाहते हैं, आप वो खाएं जो ये खिलाना चाहते हैं, आप वो पहने जो ये आपको पहनाना चाहते हैं, आपका घर वैसा हो जैसा इनके ये चाहते हैं, इसीलिए ये फैमिली स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। अब फैमिलियाँ कैसी हों कि जिसके अंदर महरम ना महरम कोई माने ना रखता हो, औलाद जो है वो माँ बाप का एहतराम नहीं करती हो, माल जो है वो हलाल और हराम इससे कोई फ़र्क

नहीं पड़ता, दूसरे के साथ दूसरे का हक खाना, सारी चीज़ें करना। अब ये सिस्टम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं आपको, ये बिल्कुल हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये पूरे इमाम के मुकाबले में है। ये उस इलाही निज़ाम के हदूदों को तोड़ रहे हैं जिस इलाही निज़ाम के लिए अल्लाह ने 1,24,000 भेजे। खुदा ने क्या भेजा? खुदा ने जब भी किसी नबी को भेजा, जब एक नबी को भेजा एक कौम पर, तो क्या कहा कि वो नबी जब कौम पर आया तो आकर जो है वो कौम को कह रहा है कि देखो एक अल्लाह की इबादत करो, और ये जो तुम तोलते हो तराजू में, जो तोलते हो इसको सही तोलो, यानी जो तुम मेजरमेंट करते हो इसको सही मेजरमेंट करो, क्योंकि अगर तुमने नहीं किया तो तुम माशरे में फसाद बरपा करोगे। अब आप ये सोचें कि परवरदिगार एक नबी को सिर्फ इस काम के लिए भेज रहा है कि वो आकर ये कहे कौम को कि तुम सही तराजू सही करो अपना, यानी मेजरमेंट का ताल्लुक किस चीज़ से, यानी पूरी सिस्टम की अदालत मेजरमेंट से है, यानी तुम बैलेंस करो चीज़ों को जिसके लिए खुदा ने तुम, अगर तुमने ये बैलेंस नहीं किया, यानी तुमने चीज़ों को छेड़ दिया जो इलाही निज़ाम है, तो तुम माशरे में फसाद पैदा करोगे। यानी अगर तुम ज़ाहिरन भी कम तोलते हो और ज़्यादा बेचते हो, या कम बेचते हो ज़्यादा देते हो, तो ये ज़ाहिरी सिस्टम नहीं है, ये पूरा सिस्टम इसी के ऊपर जो है वो डिज़ाइन हुआ हुआ है कि जो खुदा ने तुम्हें हुकूक दिए हैं अदालत के, अगर जहाँ पर वालदैन को रखना था वहाँ नहीं रखा, जो मियाँ बीवी के हकूक थे अगर उसको नहीं रखा, जो औलाद के उसूल हैं उनको नहीं रखा, घर जिन उसूलों पर कायम हो, कारोबार जिन उसूलों पर चलना चाहिए, अगर तुमने उस पर नहीं किया, यानी तुमने डिसबैलेंस किया, तो तुम माशरे में फसाद पैदा करोगे। और आज आप माशरे में फसाद देख लें, आज माशरे में फसाद किस से, एक लुकमा हराम अगर आदमी के अंदर चला जाए, एक लुकमा हराम, ज़ाहिरन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने एक सेब उठा लिया दुकान से बग़ैर उसको बताए, या मैंने जो है वो अपने हिसाब से बड़ा खुश हुआ कि मैंने मसलन एक चाय जो है आज मैंने फ्री पी ली, मैंने पैसे नहीं दिए, या मतलब कुछ भी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें हैं शायद, लेकिन ये छोटी चीज़ असल में क्या है, ये हराम लुकमा है। जब ये हराम लुकमा आपके वजूद में आएगा, तो फिर आप अपने आप से क्या तवक्को रख सकते हैं कि आप इस हराम के साथ खुदा की इबादत में खड़े होंगे, आप किस तरह उसको सजदा करेंगे। और जब ये हराम आपके अंदर बदन में चला जाएगा तो ये तो आपको नजस कर देगा, और ये नजासत पूरे वजूद के अंदर जब फैलेगी तो आप इससे कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, बल्कि आप फिर खुदा न खास्ता कोई और हराम काम की तरफ चलते हुए बढ़ेंगे। ये पहला हदफ है इस सिस्टम का कि इंसान के वजूद को नजस कर दो किस तरीके से, चाहे वो सोचों से हो, चाहे वो तस्वीरों से हो, चाहे वो आवाज़ों से हो, चाहे वो किसी चीज़ से हो, जब ये वजूद नजिस हो जाएगा तो ये कैसे खड़ा होगा खुदा की बारगाह में। और खुदा ने वैसे ही कहा है कि हमने नजासत को इनसे दूर कर दिया है, और खुदा ना खास्ता अगर इंसान आज किसी भी तरीके से नजासत की तरफ चला जाता है तो इंसान उसकी बारगाह से दूर हो जाता है। ये इनका बेस है, बेसिक्स है कि उस निज़ाम के मुकाबले में बिल्कुल कॉपी निज़ाम लेकर आओ और लोगों को उसकी तरफ लेकर। आज दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन में खुश होती है कि दुनिया वर्चुअल हो गई है, सब कुछ वर्चुअल हो गया है, दूर भी ठीक है, फ़ायदे भी हैं, आप यहाँ बैठे हुए मजलिस लाइव जा रही है, मजलिस पूरी दुनिया सुन रही है बैठी हुई, फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसके ज़रिए से वो भी तो अपना काम कर रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका नहीं है बनाया हुआ, ये उसने बनाया है। अभी हमने क्या किया ये हमारे लिए खुद सवालिया निशान है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर, हमने कितना इसके ऊपर काम किया। आज हमारे बच्चे जो है वो गेमों में लगे हुए हैं, एक गेम इंसान को या एक गेम के अंदर आने वाली एक पिक्चर या तस्वीर उसके वजूद को नजिस कर देती है, उसे पता ही नहीं चलता कि दरमियान में बहरहाल आप मजलिस सुन रहे हो, आप नोहा सुन रहे हो, लेकिन एक कमर्शियल एक ऐड आ जाता है, और अगर वो हराम चीज़ का ऐड आ गया है तो वो आपके ऊपर कितनी तासीर छोड़ता हुआ चला जाएगा, आपको महसूस नहीं हो रहा लेकिन आपके वजूद को तो उसने ख़राब कर दिया। और खुदा ना खास्ता अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया तो फिर आप पता नहीं किस वादी में चले जाएंगे, और आप जब बाहर निकलेंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपकी रूह जो है वो भारी हो गई है, ख़ुद आप इमाम से दूर हो गए हैं। एक गलती इमाम से दूर कर सकती है जाने मोहतरम। तो हम सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी के सिस्टम को चेक करें कि हम जिस दौर में आज ज़िंदा हैं, या मैं ख़ुद पर्सनल, हर शख्स अपने लिए ज़िम्मेदारी को, क्योंकि ये जो दूसरा सिस्टम है ये

खुद खेल रहे हैं, एक यहाँ बैठा हुआ बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा जो है वो दुनिया के कोने में बैठा हुआ खेल रहा है। यहाँ भी बच्चे आपस में एक साथ ऑनलाइन होते हैं कि तुम मेरी पार्टी है, वो तुम्हारी पार्टी है, सब। मुझे किसी ने भरल मार नाम नहीं लेता, मजलिस लाइव जारी होती है, लोग फिर बोलेंगे हमारी बात मौलाना ने कह दी, मतलब किसी ने मुझे कहा किसी मुल्क से कि मौलाना हमारी बेटी जो है वो गेम खेलती है। मैंने कहा गेम? कहते हाँ लड़कों के साथ गेम खेलती। मैंने कहा लड़कों के साथ कौन सा गेम है? फलाना गेम जो है ऑनलाइन, वो लड़के भी उसके अंदर होते हैं और हमारी बेटी भी खेल रही है, मौलाना क्या करें? यानी और आप वो गेमों को जो बहरहाल, क्योंकि माँ बाप को तो ज़्यादा नहीं पता ये गेम चक्कर क्या है, अंदर हो क्या रहा है। अगर आप देखें तो आपके बेटे का किरदार मस्क किया जा रहा है, किरदार तबाह कर रहे हैं आपके बच्चे का। आपका बच्चा कर क्या रहा है? धड़ धड़ धड़ धड़ धड़ मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। पत्थर दिल इसको बनाया जा रहा है, सख्त दिल इसको बनाया जा रहा है, बस तुमने जुल्म करना है चाहे सामने कोई भी हो। और उसके अंदर होने वाली चीज़ें जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, तस्वीरें इस्लाम के ख़िलाफ़, और वो जो बद अख़लाक़ी चीज़ें हैं जो कि आपके बच्चे की एज की नहीं है, बल्कि हमारी एज की भी नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को दिखाई जा रही हैं, और आपको और हमें उसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग किस दुनिया के अंदर डाले जा रहे हैं। और एक ही कनेक्शन, अभी 5G आ रहा है, अब और आप बेहतरीन डाउनलोड आपका तेज़ हो जाएगा, सारी चीज़ें तो बंदा ही ना आ जाए कहीं डाउनलोड होता हुआ, इतना जो है वो अब आगे चले जाएंगे। यानी कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोगों को? एक ऐसी वादी में, एक ऐसे सिस्टम में जो सिस्टम इनका बनाया हुआ है। इसमें जब आप जाएंगे तो आप डिज़ाइन जाएंगे, आप ना राइट देखेंगे ना लेफ्ट, जो ये कह रहे हैं आप वही करेंगे। और इसी तरह आप एक कंज्यूमर, एक यूज़र की तरह इस्तेमाल होंगे, और एग्ज़िट या कैंसर या जवानी में हार्ट अटैक या कुछ नहीं हुआ तो वायरस लग गया कोई ना कोई, और ये सब लगाकर आपकी नस्ल को इनकता किया जाएगा, और ये किया जा रहा है। दवाइयाँ दुनिया की, सारी दुनिया की मेडिसिन की कंपनियाँ सब डिज़ाइंड है, सब प्रोटोकॉल डिज़ाइंड है, दुनिया की बड़े बड़े हुकूमतों को दवाई की कंपनियाँ चलाती हैं। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है जा रहे मोहतरम, ख्वाबों में बैठे हुए हैं हम, सोच रहे हैं बस मौला आएंगे, बस चले अला जल निकल जाए मौला, बस यहीं तंजानिया से उठेंगे हम लोग और पहुंच जाएंगे हम इमाम के पास। जा रहे मोहतरम कैसे पहुंचेंगे? हमने क्या बनाया है इमाम के लिए? हम इस पूरे सिस्टम के मुकाबले में कोई ईंट बनाई हमने आज तक? कोई एक एप्लीकेशन बनाई अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए? कोई पॉजिटिव गेम बनाया? कोई पॉजिटिव एंटरटेनमेंट एक्टिविटी? इतना पैसा आप लोगों के पास, बहुत पैसा खर्च करते हैं, आपकी जो पब्लिक है मदरसा बना देगी, बिल्डिंग बना देगी। भाई बिल्डिंगों से थोड़ी लोग चलते हैं, इदारे लोगों से चलते हैं, इदारे ब्रेन से चलते हैं। कितनी ब्रेन पर इन्वेस्टमेंट की हमने, कितने लोगों को हमने दुनिया में मुख्तलिफ जगह भेजा कि हमारे लिए ब्रेन तैयार हो के वापस आए कम्युनिटी के लिए, कितने हमने ब्रेन पर इंस्टॉलमेंट किए। अगर हम सब अपनी ज़िंदगी के लिए हैं, बिल्डिंग कौन अच्छी बनाएगा, प्लॉट किसका अच्छा होगा, ये कारोबार, ये कितने कंटेनर कौन कितने उतारेगा, हमारी तो सारी ताकत इसी पे लगी हुई है। लेकिन वो इमाम के लिए, और तो इमाम मना नहीं करते कि आप दुनिया में काम नहीं करें, पैसा ना कमाएं, सब कुछ करें, लेकिन इमाम के लिए सिस्टम कितना बड़ा हमने डिज़ाइन किया है। तो कैसे आएंगे इमाम, आप मुझे बताएं, कहाँ आएंगे इमाम, किसके पास आएं? कुरान कह रहा है खूनु मास सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ कैसे होंगे? खात खाली है, मतलब इमाम को आप कैसे देंगे? मौला मैं तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी मौला कुछ नहीं किया तो आप क्या करोगे? पहले कुछ करो, कुछ दिखाओ तो हम तुम्हें अपने पास बुलाएं। जाने मतलब इमाम ऐसा नहीं है, इमाम देख रहे हैं, इमाम तक सारी हमारी बातें पहुँच। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, उलमा इकराम गुजरे हैं, कैसे के अपनी ज़िंदगियों को वक्फ किया, इस काबिल हुए। और आप यकीन करें कि जो इमाम के साथ हो गया है उसके लिए फिर कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। अगर जिसने अपने आप को इमाम से जोड़ दिया तो इमाम उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खोल देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह का वली है, अल्लाह की हुज्जत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब पहुँचे, ज़ुलैखा ने 7 दरवाजे बंद, ज़ुलैखा की बारगाह, ज़ुलैखा ने अपनी तरफ से खींचने की कोशिश की,

करनी पड़ती है। बहरहाल थोड़ी किताबें ज़्यादा पढ़नी पड़ती हैं, कोई ना कोई काम तो करना पड़ता है। तो इमाम तक पहुंचने के लिए भी कोई एक काम तो ऐसा करें कि हम लोग पहले से ज़्यादा अच्छा करें। कहीं कुरान की तिलावत, आयतुल्ला मराची नजफ़ी या बहुत बड़े आलम दीन, बहरहाल क्योंकि बी मासूमा का अय्याम था तो वो फरमाते थे तालिब इल्मों को, तीन चीज़ें उन्होंने बड़ी ताकीदन कहीं। एक कुरान की तिलावत कहा, रोज़ कुरान की तिलावत। दूसरा वो कहते थे कि इमाम ज़माना से तवस्सुल करना हर वक्त, यानी रोज़ तवस्सुल इमाम से करना। तीसरी वो कहते थे कि बीबी मासूमा की ज़्यारत करना, ये ज़रूरी काम था वो कहते हैं, तो फिर किसी मकाम पर जो है वो पहुँचोगे। अब आदमी अगर थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं डाल पाए तो कहाँ इन हस्तियों की तरह जो उलमा कराम थे। कि बहरहाल आगा कोस्तानी का वाक़या मुझे आया कि कैसी शख्सियत थे कि रजब अली ख़यात बयान करते हैं। रजब अली ख़यात के जो बहरहाल आप वाक़यात सुनते रहते हैं, जिनकी किताब इश्क कीमिया है, कि जो आलम नहीं थे, टेलर थे, मगर आलम बरज़ख़ उनके लिए खुला हुआ था। तो वो कहते हैं कि आगा कोस्तानी के वजूद से नूर निकलता था और आसमान की तरफ जाता था। तो आयतुल्ला शम्सुद्दीन बयान करते हैं एक स्पीकर से, एक सुखनान जो मजलिस पढ़ते थे आगा शुजाई के, रश्त के एक आलिम थे आगा सदराई, वो मरीज़ हो गए और जब वो मरीज़ हुए तो उनको तहरान लाया गया। तहरान में थे, हॉस्पिटल में थे, तो आगा फ़लसफ़ी जो उस ज़माने के बहुत मशहूर ख़तीब थे, तो क्योंकि ये रश्त के थे और वो इस रीजन में ख़ताबत करते थे, तो इनकी तिमारदारी के लिए गए। जब हॉस्पिटल पहुँचे तो ऐसे ही सवाल में पूछा कि फाइनेंशियली असिस्टेंस कैसे है आपकी, यानी ज़िंदगी के माशी मामलात कैसे गुजर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सब सैयदुश्शहदा का करम है। तो उनका सैयदुश्शहदा का करम तो सबके लिए है, आपके लिए कोई ख़ास नहीं, सैयदुश्शहदा का करम। फिर उन्होंने अपनी दास्तान बताई कि मेरे पास एक बाग था और उस बाग को मैंने सौदा किया और मैं आगा कोस्तानी की खिदमत में पहुंचा। तो जैसे उनकी खिदमत पहुंचा तो उन्होंने मुझे बोला कि ये जो तुम्हारा, तुमने अपनी वो जो प्रॉपर्टी है ममलूका प्रॉपर्टी, उसको क्यों बेच रहे हो। तो सुन लगा कि ममलूका नहीं है, ज़माने में वो जो बादशाह गिफ्ट करता था उसको ये ममलूका प्रॉपर्टी कहते थे। कहता मुझे किसी बादशाह ने नहीं दी है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। कह रहा है तुम्हें याद है जवानी में जब तुम करबला गए थे तो तुमने इमाम हुसैन की ज़री को पकड़ के ये दुआ मांगी थी कि मौला मुझे कोई ऐसा सिस्टम, ऐसी चीज़ दे दें जो बुढ़ापे में मेरे फाइनेंस को मैनेज कर सके। कहा ये सैयदुश्शहदा ने तुम्हें बाग दिया था। कहते मैं एकदम वापस गया, मैंने उस जो डील की थी उसको हार दिया। तो आगा शुजाई जिन्होंने वाकया बयान किया तो कहते हैं उसके बाद से मेरे अंदर ये जस्तजू पैदा हो गई कि मैं आगा कोस्तानी से मिलूं, कि एक शख्स को किसी की जवानी का वाकया जो ख़ुद सैयदुश्शहदा की बारगाह में, तो कैसा शख्स होगा। कह रहा मैंने बहुत कोशिश की, मेरी मुलाकात नहीं हुई। हज का सीज़न आ गया, मैं हज पर चला गया। हज पर जो डॉक्टर था हमारे कारवान में, उसने बताया कि वो आगा कोस्तानी मरीज़ हैं और यही उनका डॉक्टर है जो इलाज कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं तुम्हें मिलवा दूँगा वापस जाके। कह रहा वहाँ रोज़े अरफा आया, मना में मैं था, तन्हाई खलवत थी, कोई नहीं था। तो मैंने खुदा की बारगाह में कहा परवरदिगार तो मैं सैयद हूँ, तुझे मेरी सियादत का वास्ता, मैं तुझसे एक ही दुआ करता हूँ, आगा कोस्तानी मरीज़ हैं उन्हें शिफा अता कर दें। कहता ये मैंने दुआ की, मैं वापस आया, मैंने बड़ी कोशिश की मैं मिल पाऊँ, 11 महीने गुजर गए, मैं मुलाकात नहीं हुई। मैं मशहद मुक़दस चला गया मौला की बारगाह में। जैसे ही मैं रवाक में पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स, बूढ़े से शख्स को कुछ लोग पकड़ के ला रहे हैं। मैंने पूछा कौन है, कहा कोस्तानी है। मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने हाथ पकड़ा, बोसा लिया। जैसे ही मैंने चूमा, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहा शुजाई बहुत शुक्रिया, अराफात के मैदान में जो मेरे लिए दुआ की थी ना, कबूल हो गई। कहता है मैं वहीं बैठ गया, आधे घंटे में यही बैठा रहा कि वहाँ जब मैं दुआ कर रहा था कोई शख्स नहीं था मेरे पास। यानी किस मकाम पे आदमी पहुँच जाता है। और बहरहाल जो उनका दुनिया से वो रुख्सत हुए आगा मेलानी कहते हैं, तो मैंने

ने रिस्क में तरक्की और कुशादगी अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं परवरदिगार उन्हें रोज़गार मुहैया फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें हज़रत अली अज़हर के सदक़े औलाद साले और नेक अता फरमा। परवरदिगार हमारे घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार हमें आइमा अलैहिस्सलाम की और अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ भी मुसलमान हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा, और जहाँ जहाँ भी जुल्म और सितम हो रहा है परवरदिगार उन ज़ालिमों को जल्द से जल्द नेस्त नाबूद फरमा। उलमाए इकराम महाराज इकराम को तूल और सलामती अता फरमा। अल्लाह मरज़ुकना ज़ियारतुल हुसैन फिर दुनिया व शफ़ात फिल आखरा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले।

0: अब जबकि तुमने लिबास जंग पहन रखा है और अपनी बैत पर बाकी हो, सरजमीने करबला तक अगर अपने सरदार उमर साद की रकाब में रहकर तलवार उठाने से गुरेज किया या पछताए तो तुम्हारा खून मुबाह हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारा माल जब्त करके हुकूमत को दे दिया जाएगा और तुम्हारे अहलो अयाल पर हुकूमत का हक होगा। इसलिए होश के ना खून लो और ना फरमानी न करो।
1: आखिर क्यों?
0: अमीर
1: ये नहीं हो सकता।
0: सरपेची और हुकूमत इस्लामी
1: ये नहीं हो सकता।
0: सबब बनेगी। लिहाजा होश में रहो और ना फरमानी बिल्कुल ना करना। सहरा और रास्तों में सोते और जागते वक्त जहां भी बैठो और खड़े रहो, याद रखना अमीर यजीद के हुक्म की नाफरमानी।
2: आप पर कुर्बान जाऊं यहां क्यों खड़ी हैं? मैंने आपसे कहा तो था काफिला आएगा तो आपको खबर कर दूंगी।
3: मुझे कुछ साया नजर आ रहा है, कोई काफिला रास्ते में है।
2: खुदा का शुक्र है, चले कहीं बैठते हैं। आइए
0: जो भी सिपाही मैदान जंग से फरार होगा उसकी यही सजा होगी।
2: चलिए यहाँ से।
4: शामदीद भाई।
5: शुक्रिया।
4: ये पिछले साथ के सिपाहियों का काफिला है?
5: जी, करबला से आ रहे हैं।
4: सिर्फ यही काफिला है या दूसरे भी हैं रास्ते में?
5: नहीं, हम अकेले हैं।
4: कूफे से निकलते वक्त काफिले का एक और कमांडर और मुहाफिज था।
5: मैं ही इस काफिले का कमांडर और मुहाफिज हूँ।
4: फिर मेरा हिलाल कहाँ है?
5: मुझे नहीं पता।

0: यहाँ से चलिए बानो, इंशाल्लाह वो कल आ जाएंगे।
1: बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि शमी ने मेरे साथ ऐसा किया, गोया कि मुझे छत से जमीन पर फेंक दिया हो या आधी रात को मेरा घर लूट लिया हो।
2: आहिया बेटी, तुम हक पर हो, लेकिन तुमने देखा कि किस तरह वो आसमान से जमीन पर आ गिरी है।
3: आखिर शमीन खाला ने क्या किया है?
1: इसके बाद खाला खाला ना सुनो मैं।
2: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: सलाम।
0: रुकिए जरा,
2: जल्दी करें।
0: आओ जरा।
1: आ जाओ।
2: सलाम।
0: सलाम वालेकुम।
4: ये क्या इतने साजो सामान, वो भी करबला के लिए? सामान कम कीजिए बहनों, जल्दी
5: जल्दी सही कीजिए। सही कह रही हैं, सामान कम ले चलेंगे, जल्दी कीजिए।
0: जी
5: आइए।
1: अगर मेरे सामने उसका किस्सा तमाम कर दिया होता तब भी मेरे दिल की आग ठंडी नहीं होती। मेरी हड्डियां मेरे गम से चूर ना हो जाए।
2: आया, मैं क्या करूं कि दिल हल्का हो जाए, क्या करूं?
1: मुझे तभी सुकून मिलेगा जब कौम से इंतकाम लिया जाए। बासित ने क्या किया था जो उस पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी, सिर्फ मेरे एक हद के लिए?
2: जो इमाम से दुश्मनी कर सकते हैं वो बंदगाने खुदा के साथ सब कुछ कर सकते हैं। हम उस सरजमीन की तरफ जाएंगे जहां कायनात की उम्मीदों का नूर है। बिस्मिल्लाह। आया, तुम्हारा दिल दागदार है, तुम दुआ करो, दुआ करो कि इन लोगों की मेहनत अंजाम तक पहुंच सके।
0: इंशाल्लाह।
2: इमाम के आते ही ये जहन्नुम जैसा शहर गुलिस्तान हो जाएगा।
0: इंशाल्लाह।
2: बिस्मिल्लाह, जल्दी कीजिए, चलते हैं। आ जाओ मेरी बेटी।
0: आओ बेटी, चलो।

0: देखता हूँ कैसे जीतते हो तुम।
1: अगर तलवार असली होती तो 100 बार मर चुके होते। समझ में आ रहा है तुम्हें बदबख्त?
0: सही कहा, काश कि मेरी ये तलवार असली होती।
1: जाओ वरना लात और घूसों से भुर्ता बना दूंगा तुम्हारा।
0: होरेस के बेटे हो, औहद के पोते को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते हो।
1: अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो ना तुम।
2: क्या कर रहे हो लड़के? हम बेघर हो जाएंगे। इसका बाप हम सबको तिजारत खाने से निकाल देगा। चलो मेरे साथ। उम्र में बड़े हो गए लेकिन अकल जरा भी नहीं है।
3: मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे भाई पर हाथ उठाया है।
2: चलो।
0: देखा कैसे उसे धूल चटाई।
4: तुम लोग जितने भी कोशिश और इतराज कर लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे इख्तियार में नहीं है। हुक्म है कि किसी को भी कुछ भी ना दिया जाए और यही आखिरी फैसला।
5: हमने क्या खता की है?
4: क्या खता की है?
0: सुनो अलवान,
4: खुदा का दुश्मन
0: वही हुआ जैसा कहा था।
4: आ गया और पूछ रहे हो क्या खता की? अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इब्ने ज़ियाद की जिंदगी की दुआ करता कि वो हमें इस गलती की सजा ना दे।
6: क्या मतलब?
4: मतलब यही कि जब मीसम में तम्मार के जनाजे को चुराने वाले तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो क्या हुकूमत तुम पर सोना और सिक्का लुटाएगी?
2: वाकई सोने के और सिक्के हैं या सब अली के बेटे से जंग के लिए खर्च कर दिए हैं? सारे अरबी जवानों को तो जंग पर भेज दिया है, अब सिर्फ हम रह गए हैं और कुछ अजमी जवान जो खिदमत के लिए हमसे मजदूरी वसूल करते हैं। हम अजमों को किस चीज की मजदूरी दें? उन्हें क्यों जंग पर नहीं भेजा जाता? बेहतर होगा कि आप इसका जवाब दें।
4: अरबी मर्दाने मैदाने जंग है ना कि अजमी, ताकि अजमी निफाक से दूर रहें। हजरत यजीद की मदद ना करना उनके दुश्मन की मदद करने जैसा है।
7: छत तक पूरा लदा और भरा पड़ा है। क्या कहूँ, जगह नहीं है।
8: खुदा की कसम तुमसे बेहतर

0: कौन होगा?
1: हाँ?
0: सारा माल आधी कीमत पर दूंगा ताकि कूफे से खाली हाथ ना जाओ।
1: क्या करो इसका? माजिद, तुम्हारा माल क्या है?
0: मिस्री रेशम।
1: मिस्री रेशम? रेशम का क्या करूंगा? ओफो, क्या करूं कि मेरा ईमान तुम्हें अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं दे रहा।
2: खुदा आपको खैर दे।
1: ठीक है, जाइए, जाकर अपना सामान लेकर आइए, जगह का कुछ कर दे।
0: खुदा आपको जजाए खैर दे। यकीन माने, अगर इस बार इस शहर से खाली हाथ जाना पड़ा तो अपना सर दे दूंगा, लेकिन इस शहर के लोगों के सामने मैं अपना हाथ कभी नहीं फैलाऊंगा।
1: अपने ईमान की हिफाजत करो, ईमान को बचा कर रखो। अगर इस मामले में खुद को मजबूर पाते हो तो इल्जाम ना दो, राजी हो तो छोड़ दो।
0: राजी हूँ शेख, राजी हूँ।
1: राजी हो तो बिस्मिल्ला।
0: खुदा हाफिज।
3: दादा जान।
1: बोलो बेटे।
3: आप लेन देन कर रहे हैं, आपके लिए खबर है।
1: कौन सी खबर?
3: मिसम के जनाजे को चुराने वाले का नाम बताऊंगा, लेकिन मुझे इसकी पूरी कीमत चाहिए।
1: नाइम। कैसे मान लूं? तो मैं तुम्हारी मां से मिलवाऊंगा, लेकिन कैसे मालूम होगा कि तुम सच बोल रहे हो?
3: मैंने खुद अपनी आंखों से उस रात गली में देखा था।
4: फिर मैं कैसे नहीं देख सका?
3: आपका ध्यान नहीं था क्योंकि तलवार चला रहे थे।
1: उस अंधेरी रात में उसका चेहरा कैसे पहचाना?
3: उसको पहचानता हूँ, अजनबी नहीं थी।
4: सोच लो, कहीं कहीं अपनी माँ से मिलने के लिए किसी बेचारे को गुनहगार तो नहीं ठहरा रहे हो?
1: सुना नहीं क्या कहा? उसको पहचानता है, अजनबी नहीं है वो। नाम जब बता देगा तो उसके पास जाएंगे, अगर मुजरिम नहीं होगा तो भागेगा नहीं। हाँ तो वो बदबख्त चोर कौन है?
3: जब तक मामले की कीमत अदा नहीं करोगे, मुंह नहीं खोलूंगा।
1: मेरा पोता बिल्कुल मेरी तरह है।
3: सिक्के नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी माँ।
1: ठीक है, मंजूर है। यही कि तुम्हारी अक्ल ने काम किया और मेरे पास आए, मंजूर है। तुम सच में अपनी माँ को देखने के काबिल हो। सुबह तुलु होने से पहले अपने बेटे का जवाब दो, उसे माँ से मिलवा दो।
3: अगर कल आपने धोखा दे दिया तो इसलिए अभी बताइए।
1: नहीं, कसम खाता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कल अपनी माँ से मुलाकात करूंगे, लेकिन सिर्फ तुम अकेले, हातिफ नहीं। तो वो हराम खोर मर्द कौन था जिसका तुमने कत्ल किया?
3: मर्द नहीं था।
1: मर्द नहीं था?
3: सामिया, हिलाल की माँ। मैंने देखा कि जनाजे को डर के मारे घसीट के ले जा रही थी।
1: सर से पांव तक तुम पर सोना निछावर करना चाहिए। तुम्हारे सर का एक बाल मेरे तमाम आदमियों से ज्यादा कीमती है।
4: कहाँ?
3: सोने जा रहा हूं ताकि कल अपनी माँ को देखते वक्त ताजा रहूं।

0: ये क्या कर दिया बाबा? मालूम है ना कि क्या वादा किया है? अगर कल उसने अपनी माँ को नहीं पाया तो उसका ईमान भी खराब होगा और फिर जिंदगी भर कभी जबान नहीं खोलेगा। मुझे बदबख्त कर दिया।
1: इसे ले जाओ उसकी माँ के पास।
0: क्या कहूं उसे? बताऊं कि उसके दादा ने उसकी माँ को कत्ल किया और उसके जनाजे को इस तरह गायब किया कि उसकी कब्र का निशान तक न छोड़ा।
1: उसकी कब्र को ढूंढ रहे थे, उसकी कब्र यही है मेरे कदमों तले, जिसके वो लायक

0: सलाम।
1: माफ कीजिए, हम आपके साथ नहीं आ सकते।
0: नहीं,
1: क्या लगता है अब क्या होगा?
2: कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
0: माँ, दरवाजे के मुहाफिजों पर कितना भरोसा है आपको?
3: जहाँ तक मुझे पता है, वो बच्चों और औरतों से बगैर कुछ पूछे जाने दे रहे हैं। तुम परेशान मत हो।
1: जरूर इतने ज़ियाद की बातें कर रही है।
0: अगर समझ गए कि हम करबला जा रहे हैं, अगर हमें गिरफ्तार कर लिया तो मैं इन बच्चों के साथ क्या करूँ?
3: आहिया, अगर आने का इरादा कर लिया है तो परेशान ना हो और डरो मत।
1: सही कह रही है। वो किस तरह भला तुम पर एतिमाद करे जबकि तुम्हारा बेटा इमाम के मुकाबले में खड़ा है। हमने तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है सामिया, लेकिन इस बार हम अलग हैं। वो अगर तुम्हारी अम्मी बहू को नजरअंदाज करे और उसे हमसे अलग समझे। जब से इब्ने मरजाना तख्ते हुकूमत पर आया है, हमारे शहर के मर्दों के सिक्कों के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही है। माफ करना, मेरे दिल में शक पैदा हो गया। हम चलते हैं।

0: मुश्किलें बढ़ा रही हो नाइला, फिलहाल बच्चा तो नहीं है।
1: ऐसा बच्चा है कि मेरी आंखें जिसकी मुंतजिर है, ना कोई खत ना कोई खबर। उसके जाने से पहले जो उसके कान में कहा, यकीन नहीं था कि एक नया खेल शुरू हो जाएगा।
0: तुम्हारे वालिद से बात करूंगी, बहुत से लोग करबला की तरफ जा रहे हैं, मैं उनसे कहूंगी किसी को भेजे जो हिलाल की खबर मालूम करे। समझ गई ना तुम?
1: नहीं, मेरे ख्याल से सामिया का काम है। सामिया का बेटा यजीद के लश्कर की खिदमत करे और वो बैठी देखती रहे। हिलाल के जाने की खबर सारे कूफे में फैल चुकी है। ये औरत यूं ही नहीं बैठी रहेगी। मुझे यकीन है उसने हिलाल के साथ जरूर कुछ किया है।
0: हिलाल तो बिना बताया गया है, सामिया से वो कहां मिला होगा?
1: मुझे क्या मालूम कौन सा फितना खड़ा किया है। जरूर कोई खत कोई कासिद वगैरह भेजा होगा। कितनी बदबख्त है नायला। अच्छा या बुरा, आज दर्द और मरहम एक है। फिलहाल वालिद से कुछ ना कहें।
2: जनाब, जनाब मैंने देखा वो घर में ही है।
0: अंदर जाओ।
2: लाओ इधर लाओ। जनाब वो घर के अंदर छुपी है।

0: ए सामिया, ये आखिरी बार तुम्हें मोहलत दे रहा हूँ, बाहर निकल आओ, अपनी आंखों से देख लो, मेरे हाथ में मशाल है, सुन रही हो या नहीं बदबख्त औरत।
1: अरे वाय हो, तुझ पर तेरी माँ तेरे गम में बैठे।
0: मुझे बाकी घर वालों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर सबने जलने का इरादा कर लिया है तो फिर मैं क्या करूं? आग लगा दो।
2: कुफे के मर्दों को जंग पर भेज दिया ताकि उनकी औरतों और बच्चों को आग से डराओ। लाना तो तुम्हारी गैरत और मर्द।
3: पंची की तरह जबान चल रही है हा?
2: अगर तुम लोगों का बस चले तो तुम हम सभी को यही जिंदा जला दो।
4: रुक जाइए।
5: जनाब अम्र, आपकी शान के खिलाफ है औरतों के रूबर होना। सलाम।
3: अलैकुम सलाम।
5: सामिया को उसकी बहू के सुपुर्द कर दें, थोड़ा हिसाब मुझे भी करना है। हिसाब बराबर करके आपके हवाले कर दूंगी। उसके बाद आप लोगों की नजरों में सर बुलंद और इब्ने ज़ियाद की तारीफ के हकदार होंगे।
3: सर बुलंदी का मियार खुदा की रजामंदी है ना कि लोगों की। सामिया एक खबीस जानवर है जिसने सबको परेशान किया है, खासकर आपके खानदान को। मुझे खबर मिली है कि एक उसे खरीदता है और दूसरा बेचता है।
5: फिलहाल इसे मेरे हवाले कर दे।
3: इन नजर जमाए आंखों का क्या करूं? अब बात का कोई फायदा नहीं है।
5: इब्ने हुरैस, अच्छा इनाम दूंगी।
6: जनाब, दारुल हुकूमत में कोई मुश्किल पेश आ गई है। जनाब इब्ने ज़ियाद की ताकीद है कि उनके पास पहुंचे।
3: इब्ने ज़ियाद के हुक्म के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इनाम के लिए। कल दोपहर तक सामिया तुम्हारे हवाले। अलबत्ता यहां मौजूद लोगों की नजरों से बचकर।
0: अगरचा तुम्हें सजा देने की जल्दी है, लेकिन क्योंकि तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है, इसलिए उस वक्त तक यहां रुकूंगा जब तक दरवाजा ना खुल जाए। इस घर पर नजरें जमाए रखना।
6: जी जनाब।
4: खुदा का शुक्र है कि यह किस्सा तमाम हुआ। यहां से जाइए, परेशान ना हो। जाइए जाइए यहां से जाइए।
0: नजरें जमाए रखना।
7: जी जनाब।

0: शौहर कहाँ है जो इतनी रात में बच्चे को लेकर काम कर रही हो?
1: जी था, लेकिन उसे तीरों कमान थमाकर करबला भेज दिया गया।
0: सारा माल कितने में दोगी?
1: सारा माल?
0: सामिया, मैं हूं तुम्हारी बहू नायला। कहाँ हो तुम? आया, मेरी आवाज सुन रही हो?

0: जल्दी करें। माँ की फिक्र ना करना। बताया नहीं कहाँ का इरादा है, आवाज तो नहीं करोगी? अपने बेटे का पता बता दो, वहीं चलेंगे। मैंने कहा जल्दी से अपने बेटे का पता बता दो।
1: घर से तुमने मुझे निकाला है और मुझसे पूछ रही हो कि जाना कहाँ है? अपने शौहर का पता मुझसे मांग रही हो? खुदा का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम्हारे बाप के चाहने वाले मेरे बेटे के नाम को खूब जानते हैं।
0: अगर मोहतरमा ने खतना दिया होता तो आज मेरा शौहर मेरे पास होता, वरना हिलाल कहाँ और करबला कहाँ?
1: नायला, कूफे वालों की बेसुध बातों को सिर्फ सुनो, यकीन मत करो। मुहाल है कि मेरा बेटा ऐसा काम करे।
0: लेकिन इत्तफाकन इस बार लोगों की बात सही निकली, तुम्हारा बेटा इस वक्त करबला में है। वादा किया है कि लौट कर आएगा, काफिले हिलाल के बगैर आए हैं। सच बताओ, किस बयाबान में हिलाल को भेजा है और कहा है कि अगर वापस आओगे तो माफ नहीं करूंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा खत लिखा है? हाँ,
1: शायद तुम भूल गई हो कि किससे बात कर रही हो। बेहुदा बातें ना करो। अगर मेरा बेटा करबला गया भी होगा तो इसलिए ताकि अपने इमाम की रकाब में जंग कर सके, उसके अलावा कुछ भी मुहाल है। आगे बढ़ो।
2: ताज्जुब है कि कैसे इन दोनों मासूम बच्चों को छोड़कर चली गई, समझ में नहीं आ रहा। माँ होना आग होने से भी सख्त है। सच में नायला की हालत ने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा है। बेचारी पागलों की तरह हो गई है, हमेशा हिलाल की तलाश में फिरती रहती है। लोग उसके बारे में बातें करते रहते हैं लेकिन उसके शोहर की कोई खबर नहीं। आखिरी बार उसकी खबर कब ली थी? उसकी हालत पूछी थी क्या? उसके लिए कुछ किया भी था? कितनी बार तुमसे इल्तिजा की कि उससे शादी की इजाजत ना दो, लेकिन तुमने नहीं सुना। मगर अब तो कुछ करो, उसके लिए कुछ करो। मैं इल्तिजा करती हूँ,
3: मुझसे बात करें आप, मेरी ओर देखें।
2: जब आपसे बात करूं तो इधर उधर देखने के बजाय मेरी तरफ देखा करें।
4: मैं बेकार नहीं बैठा जो तुम्हारे दामाद के जरायम को छुपाता फिरूं। उसकी गलती उसे ही मुबारक, अब सजा का मंतजिर रहे।
2: दामाद चाहे जहन्नुम में, अपने बेटे के लिए अमन और पनाहगाह बनो। जाओ पूछो हिलाल करबला में है या वो वहां से भाग निकला, जिंदा है या मर गया। नायला पर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ कि उसकी किस्मत खुदा ने तारीकी और स्याही के साथ लिखी है। क्या करे?
4: कुफ्र मत बको बेगम, कुफ्र मत बको।
2: काश मैं मर जाती लेकिन अपनी बेटी को तकलीफ में ना देखती।
4: बस करो।
2: बस करो? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? बोलिए, नायला को ऐसे तकलीफ में देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? अगरचे आप मुझे माँ के लायक नहीं समझते, मैं वो कनीज हूँ जिसकी बेटी तुम्हारे अम्बाल का हिस्सा है, यही ना?
4: ला इलाहा इल्लल्लाह।
2: खुद ही सारे फैसले करते हो, मैं किस काम की? मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ।
4: परेशान मत हो, हिलाल को किसी बुरी जगह नहीं भेजा है। उसी दिन ये खत उसके हाथ में देकर

0: इब्ने साद के पास भेजा था। मैंने उसमें उसकी जंगी महारत और तीरंदाजी के बारे में लिखा था कि वो उसे वहीं रखे।
1: क्या हिलाल को करबला में रोक रखा है? नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं।
0: अस्तग़फिरुल्लाह, मुंह बंद रखो।
1: ठीक है, तो अगर करबला में है तो नायलों को क्यों नहीं भेज देते कि मेरी बेटी इस तरह से बदहाल ना हो? जवाब दीजिए आप।
0: तुमने अपनी आंखें कहां लगा रखी है औरत? देख रही हो कि शहर लोगों से खाली है। अगर हिलाल मौत और जंग के दरमियान होता तो मौत को ही इंतखाब करता, इसीलिए भेजा ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन तुम्हारी और मेरी बेटी की अक्ल बात को बिल्कुल नहीं समझ रही है।
1: बिस्मिल्लाह।
0: इसे हटाओ, हटाओ यहां से, जल्दी करो।
1: उठ जाओ, उठ जाओ।

अगर गुनाह ना होता तो अपने पंजों से जमीन खोद कर इस कब्र से तुम्हें बाहर निकालता। काश एक बार और मौका मिल पाता। अफसोस है आखिरी वक्त पर मैं तुम्हारे पास नहीं था। तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह नहीं है इस बदबख्त के पैरों तले। ये जगह हाथी फार अलवान की माँ के लायक नहीं है। नहीं पता तुम्हारे लिए गिरिया कर रहा हूं या पागल हो गया हूं।

0: कौन है? कौन है?
1: तुम यहां हो?
0: तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए।
1: बेकरार हूं, बाबा की तलाश में आई थी लेकिन नहीं मिले।
0: यहां नहीं है।
1: कहां है?
0: मुझे क्या पता।
1: सामान का काफिला हिलाल के बगैर लौटा है, इसलिए परेशान हूं।
0: उम्र सात के यहां रह गया है और यही तय पाया है।
1: किसने तय किया ये कि मैं इससे बेखबर हूं?
0: उसी ने जिसने उसे मक्का से अगवा करने का हुक्म दिया था।
1: इब्ने सियाद?
0: औहद।
1: ये क्या कह रहे हो नईम?
0: तुम बेचारी इतनी भोली हो कि अपने बाप को नहीं पहचान पाई। जिसने तुम्हारे शोहर को कोफे लाने का हुक्म दिया वो मरजाना का बेटा नहीं था, और खत से सिर्फ औहद बाखबर था बस।
1: तो फिर इब्ने सियाद का हुक्म और कैद का माजरा?
0: तुम्हारे बाप के काले कारनामे तुम्हें इब्ने उरैस के कैद खाने की तरफ फरेब ना दे।
1: मेरे शोहर को मक्का में तनहा छोड़कर झूठ के सहारे क्यों गिरफ्तार करवाया बताओ?
0: ताकत के बलबूते पर सबको अपनी कुदरत के तले कुचल दे और तुम्हारी दर्द और तकलीफ का बैठकर तमाशा करें।
1: तुम तो औहद के हम प्याला हो, फिर ये सब एतराफ क्यों कर रहे हो?
0: मैं तुम्हारे बाप के हाथ की कठपुतली बन चुका हूं। काफिले को कत्ल करने का मकसद गैरत को जिंदा करना था। जो कह रहा हूं जान लो, मेरे दो बेटों की कसम की उस दिन मेरा तुमको

और कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। तुम मेरी सौतेली बहन हो। मुझ में और औहद में यह फर्क है कि मैं अपनों को कत्ल नहीं करता। क्योंकि अपने खानदान का मतलब समझता हूं।

0: कुछ हुआ है क्या इब्ने हुरैस?
1: तुम्हारे रिश्तेदारों की क्या खबर है औहद?
0: कौन से रिश्तेदार?
1: बिलाल की माँ।
0: आखिरी बार उछलते कूदते तुम उसके पीछे गए थे, उसके बारे में मुझसे पूछ रहे हो?
1: अच्छा, घर वाले नहीं है क्या? ना कोई शोर और गुल, ना कोई आमद और रौनक,
0: लेकिन सिपाही का दिलो दिमाग बंद है।
1: तकलीफ देने का मकसद वो पोशीदा खत है जो आपके बेटे के लिए आया है। मुझे हुक्म हुआ है कि फौरन बगैर ताखीर के इसे करबला पहुंचा दूं।
0: नईम के जिम्मे हजार काम और जिम्मेदारियां हैं। मेरा तिजारत खाना एक तरफ और लोगों के लिए बख्शीश दूसरी तरफ। अफसोस है कि जंग में हाजिर होने की सआदत से महरूम हूं।
1: आखिरी बार जब हमारी बात हुई थी तो उसने करबला जाने वाले एक लश्कर की कमांड का खुद ही मुझसे मुतालबा किया था। मैंने भी उसकी बात नहीं टाली।
0: बिल्कुल है, मुझे नहीं बताया, शायद बताना चाह रहा हो। अगर कबीला भी मुकाबले में आ जाए तो जिहाद वाजिब है और मुकद्दम भी।
1: यकीनन ऐसा ही है।
2: अस्सलाम
1: वालेकुम। माशाल्लाह, माहिर शमशीरबाज। कूफे के बाजार में खूब गर्द और खाक उड़ाई तुमने। सुना है बेटा बाप से भी बहादुर है।
0: जिसने मीसम के जनाजे के चोर का पता लगाया वो यही शेर का बच्चा है, जिसने खुद देखा था। क्यों, ऐसा ही है ना?
1: बहुत खूब। हुकूमत का इकबाल तुम्हारी जहानत से बुलंद हुआ है बेटे।
0: जाओ।
3: जी अभी आया।
4: कोई मेहमान है?
3: जी जनाबे हुरैस हैं।
4: थकावट खत्म कर लो तो उन्हें खबर करो। हुरैस, हातिफ और अलवान को बुलाओ, उनसे काम है।
3: जी जनाब।
2: बाबा आप आ गए।
4: जब तक यहां नहीं हूं अपना ख्याल रखना, बाजार के वाकिए की तरह, ठीक है?
2: जरूर।
4: मेरे पुश्त पनाह बने रहना।
5: फिर जो तय किया था उसका क्या?
2: क्या तय किया?
4: जंग बच्चों की जगह नहीं है बेटे। लोग सहरा से भागते हैं, तुम कहां और नैनवा कहां?
1: तुम्हारे बेटों की जगह है मगर ऊंट की पुश्त पर, ताकि उसकी बुलंदी से इस्लाम की कामयाबी का नजारा कर सकें। अलवान को जंग देखने की इजाजत उसकी शुजाअत की बुनियाद पर अमीर इब्ने ज़ियाद ने दी है।
4: तो तुमने खुद ही फैसला भी कर लिया कि अब आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है?
1: ऐसा ना कहें जनाब नईम, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि होश और शुजाअत के लिए मैदान जंग उनके लिए

0: की जमीन है। अलवान, अगर मैं ना भी कहता तब भी तुम्हारा बाप तुम्हें जंग के मैदान में जरूर ले जाता।
1: तो फिर पहले कर्बला जाएंगे, फिर उसके बाद फौरन जो हमने तय किया वहां जाएंगे।
2: क्या तय हुआ और कहां जाना है?
3: बताऊंगा।
1: बताएं बाबा।
3: मेरी जान,
1: दादा सही कहते हैं।
3: किस बारे में?
1: अमीर के हुक्म की नाफरमानी गुनाह है।

0: कहां गुनाह का वीरा है। चलो अब यहां से जाओ, जाओ जल्दी,
1: इन्हें अंदर ले जाओ।
2: हमेशा मेरे लिए भाई से इफ्तिखार हूं।

0: मेरे रास्ते से हट जाओ नायला, कहीं पागल ना हो जाऊं।
1: कहां जाएंगी?
0: करबला, करबला जाऊंगी ताकि अपनी आंखों से जो तुम झूठ बोल रही हो उसे देख सकूं।

0: अगर हिलाल मेरा बेटा है, अगर मैंने उसे पैदा किया है, तो मुहाल है वो अपने इमाम के मुकाबले में तलवार उठाए। उसको हराम लुकमा नहीं खिलाया कि तुम्हारे सामने मुझे जलीलो ख्वार होना पड़े।
1: सामिया, अगर इस घर से कदम भी निकाला तो गिरफ्तार कर ली जाएंगी। सिपाहियों को तो छोड़ो, तुम्हारे बाकी दुश्मन भी तुमसे इंतकाम लेने के इंतजार में बैठे हुए हैं।
0: तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। करबला जाना और पहुंचना मेरी अपनी जिम्मेदारी है।
1: माना कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। परेशान ना हो, तुम्हारा हिला लौट आएगा।
0: तुम्हारी बातों से महसूस हो रहा है कि तुम कुछ ऐसा जानती हो जिससे मैं बेखबर हूं।
1: आखिरी दिन मैंने हिलाल से वादा किया था कि अमीर की नाफरमानी ना करें और सामान पहुंचाकर लौट आए। मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए नहीं, पर उसके उसके आने वाले बच्चे के लिए। उसे जरूर लौट कर आना होगा।
0: इस जुल्मत और तारीकी में रहमत इलाही की अच्छी खबर सुनाई। अच्छी खबर परवरदिगार, परवरदिगार।
1: तो फिर जब तक हिलाल ना आ जाए, परेशान ना हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे।
0: मेरी परेशानी और ज्यादा हो गई है, अपने हिलाल के लिए भी और तुम्हारे मासूम बच्चे के लिए भी। मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। नायला,

0: दरवाजा खोलो। नायला कहाँ जा रही हो?
1: यहाँ ज्यादा अमन है, अमरो और उसके लोग रहम की जबान नहीं जानते, मुझे माफ करना।
0: कब तक, कितने दिन यहाँ रहूंगी? तुमसे कह रही हूँ

0: खुद ने ही तो कहा था कि अमीर के हुक्म की ना फरमानी गुनाह कबीरा है।
1: नाइला, नाइला, कहाँ है नाइला?
2: वालेकुम अस्सलाम। क्या किया उसने कि इस तरह सरगर्दां आई हो?
1: मैंने पूछा नाइला कहाँ है?
2: नहीं है।
1: यानी क्या? अब क्या नई कहानी बनाई है? मेरा भाई तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो अब मेरी माँ की बारी आ गई?
2: क्या बक रही हो बिनते हनीफ? आदमी की जबान नहीं समझती? आदमी की जबान में बात करो और अपनी तकलीफ बताओ।
1: तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई और कोई खबर भी नहीं। अब तक कुछ पता नहीं। अब तुम मुझे हकीकत बताओ और कुछ भी हो मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ जलील कर दूंगी।
2: इसे बाहर निकालो।
3: बाहर जाओ। चलो।
1: मुझे छोड़ो। मैं तुम्हारे पत्थर दिल से वाकिफ हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले नहीं जानते हैं? अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी।
2: तुम्हें जो करना है करो। बाहर निकालो इसे।
3: बाहर चलो।
1: मुझे छोड़ो।
4: चलिए यहाँ से।
1: नाइम, नाइम, नाइम, इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुक्म से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला।
3: ज्यादा ना बोलो औरत।
5: ये कौन सी जगह है?
0: नैनेवा।
6: इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल।
7: अभी तुम्हारे खतूत की स्याही भी नहीं सूखी, तुमने आलू लाह पर अपनी तलवारें खींच ली। तुम्हारी इतनी जुर्रत।
4: खुदा की कसम अपने किए पर जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ।
0: आज नईम का मकसद औहद को एतिमाद हासिल करना है।
1: हमें ढूंढ रहा है
3: बिनते औहद।
8: खुदा मुझे मौत दे दे कि मेरा इमाम तन्हा है और ये मेरी जान के दुश्मन बने हुए।
0: सामिया सही कह रही थी, बेटा नहीं दिया तो मेरी बेटी को भी मुझसे ले लिया।
8: जब तक वो कश्मकश में है काम तमाम कर देते हैं। मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता सका कि मैं अपने मौला अली के बाद तुम्हारा आशिक हूँ।

0: अलवान, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज। बिना बताए कैसे?
2: मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद का हुक्म था।
3: ये लीजिए जनाब।

और पैकरे इल्म व अमल के नाम, जिसने जिंदगी भर हमारी उंगलियां थामे रखी और रुखसत होते हुए अपने लहू से हमारी बका की जमानत।

लेकिन अगर तुम्हारा अंजाम अच्छा है तो तुम अच्छे हो। जैसे जिंदगी मिसालें बयान की जाती हैं, जैसे हज़रत ज़ुहैर बिन क़ैन उस्मानी उल मज़हब थे, तीसरे खलीफा के मानने वालों में उनका शुमार होता था, लेकिन जब करबला आ पहुँचते इतने रास्ते को उन्होंने बदला कि वो हुसैनी बन गए, वो लोग करबला वाले बन गए, उनका शुमार शहदाए करबला में होने लगा। अब उनका शुमार जब करबला वालों में होने लगा तो फिर उनकी पिछली तारीख बयान नहीं की जाती, उनकी आज की तारीख बयान की जाती, उनके अब की तारीख बयान की जाती, उनके किरदार पर गुफ्तगु होती है तो करबला वाले किरदार पर गुफ्तगु होती है। यह हज़रत हूर अलैहिस्सलाम की हम मिसाल बयान करते हैं कि वो पहले क्या थे बयान नहीं करते, इसलिए कि वो कमांडर थे और वो इब्ने ज़ियाद के लश्कर में उनका शुमार होता था, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बदला और उनकी आक़िबत अच्छी हो गई, उनका अंजाम अच्छा हुआ, अब ये नहीं देखा जाता कि वो क्या थे, अब ये देखा जाता है कि वो क्या हैं। देखिए कभी कभार क्या थे पे गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि ये गुफ्तगू होती है कि वो अभी क्या हैं। तो हज़रत हूर अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुहैर बिन क़ैन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदला है। तो इसलिए जहाँ पर गुफ्तगू होती है ना कि आक़िबत बखैरी की दी एंड अच्छा होना चाहिए, इसीलिए कि हमारे पास आयतों में, हमारे पास रिवायतों में ताकीद है कि आज जो तुम्हारे पास ईमान है इस पर खुश नहीं हो जाना, बल्कि आखिरी लम्हात तक अपने ईमान को और अपने मज़हब को और अपने मकतब को बचाना एक काम है, एक जिम्मेदारी है। इसलिए कि मोमिन मौसमी नहीं होता है, वो खाने वाली मौसमी नहीं, मोमिन सीजनल नहीं होता है। मोमिन ये नहीं कि आज ये दो महीने अच्छे हैं तो मैं भी दो महीने अच्छा रहूं, दो महीने के बाद मेरे हालत भी बिगड़ जाए, रमज़ान में मुसलमान रहूं, रमज़ान के बाद मुसलमान ना रहूं, मुहर्रम और सफ़र में मोमिन रहूं, मुहर्रम और सफ़र के बाद मोमिन ना रहूं। ईमान का ताल्लुक मौसम या सीज़न से नहीं है, मोमिन हमेशा मोमिन होता है। मोमिन इब्तिदा में भी मोमिन है, मोमिन दरमियान में भी मोमिन है, मोमिन आखिर में भी मोमिन होता है, मोमिन खुशी में भी मोमिन होता है, गम में भी मोमिन होता है, मोमिन परेशानियों में भी मोमिन होता है, मोमिन मसरतों में भी मोमिन होता है, मोमिन मोमिन होता है। उसके लिए कोई और चीज़ जोड़ी नहीं जाती ईमान के साथ, वो मौसमी नहीं होता, सीजनल नहीं होता है, हमेशा मोमिन रहता है। मुमकिन है कोई ज़िंदगी में उसकी चीज़ें आए, वो हिदायत से दूर हो जाए, लेकिन फौरन वो पलट कर आएगा सही रास्ते की तरफ, जिसकी तरफ कुरान मजीद ने इशारा किया है। अनबिया अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह तबारक व तआला ने साहिबान ईमान से खिताब करके कहा, देखो ला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तक्वा इलाही इख्तियार करो, मरना तो मुसलमान मरना, मौत आए तो इस्लाम की हालत में मौत आए, कहीं कुफ्र की हालत में ना आ जाए, जाते जाते इस दुनिया से कोई डाउट क्रिएट्स हो जाए तुम्हारे फेथ में, तुम्हारे अकीदे में, मरते मरते तुम काफिर होकर मर जाओ, मुशरिक होकर मर जाओ या मुनाफिक होकर मर जाओ, नहीं इसका ख्याल करना पड़ता है। ला तमूतुन इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यानी तुम्हारी मौत इस्लाम की हालत में आए, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद ने फरमाया। कभी अनबिया की वसीयत अपने बच्चों के लिए, हज़रत इब्राहिम ने अपने बच्चों के लिए, हज़रत याकूब ने अपने बच्चों के लिए कहा, देखो मरना तो मुसलमान मरना, यानी ये कुरान मजीद की आयतें हैं, मरना तो मुसलमान मरना। हज़रत याकूब ने कहा मरना तो मुसलमान मरना, हज़रत यूसुफ़ जो हज़रत याकूब के बेटे थे, आपने हाथों को बुलंद करके कहा, परवरदिगार वजारत तो मिल गई, मिनिस्ट्री तो मिल गई, और इससे बढ़कर क्या चाहता है इंसान दुनिया में जी, मुसीबतों के बाद परेशानियों के बाद आपको मिनिस्ट्री तो मिल गई, फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, आपने खिदमत भी की है, लेकिन आप हाथों को बुलंद करके कहते हैं परवरदिगार तवफ्फनी मुस्लिमन, परवरदिगार मुझे मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए। कौन दुआ कर रहे हैं? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि दी एंड मेरा अच्छा होना चाहिए, अब मैं मिनिस्टर हूँ, मेरी मिनिस्ट्री के बारे में मुझे पूछा नहीं जाएगा, मेरी हुकूमत के बारे में मुझसे पूछा नहीं जाएगा, मुझसे पूछा जाएगा मेरे मज़हब के बारे में, मुझसे पूछा जाएगा मेरे दीन के बारे में, मौत आए तो मुझे मुसलमान के, इस्लाम की हालत में, मुसलमान की हालत में मौत आए। ये दुआ की आपने, हमारे लिए भी दुआ के लिए जो फ़िक्रे कुरान मजीद में है वो ये कि वह तवफ़ना माअल अबरार, परवरदिगार हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे आयबों पर पर्दा डाल दे, और हमें मौत आए और हमारा शुमार हो तो किन के साथ होना चाहिए? नेक बंदों के साथ हमारा शुमार होना चाहिए। दी शुमार होने का मतलब दी एंड हमारा अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, दी एंड और आकिबत हमारी अच्छे लोगों के साथ हो। ये हम दुआ भी करते हैं, हमारी दुआ तो दुआ, अगर बात आप तक पहुंच रही है तो मैं पैगाम भी बता दूं, ये आयत भी सुना दूं आपको।

कहते हैं मैं मस्जिद मुकद्दस गया ज़ियारत के लिए और वहाँ पर मैंने मेरे दिल में एक फिक्र आई, सोच आई कि मैं एक सवाल करूँ उलमा से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तीन गोशों में अलग अलग तीन बड़े उलमा बैठे हुए थे, मुतालिया कर रहे थे। तो कहते मेरे जहन में बात आई कि चलो मैं इनसे एक सवाल कर दूँ, एक सवाल तीन आलिम से करूँ। तो पहले आलिम के पास गए जो मोतबर आलिम दीन थे, तो आपने सवाल किया, बताओ इंसान को इस हरम में, मौला इमाम रजा के हरम में सबसे बेहतरीन दुआ क्या करनी चाहिए। वो कहते मैंने तीन उलमा से एक ही मर्तबा एक ही सवाल किया और तीनों उलमा का जो अलग अलग बैठे हुए थे एक ही जवाब था कि हरम में जब आना तो जरूर ये दुआ करना कि परवरदिगार हमारा अंजाम नेकी पर। तीनों आलिम उलमा ने एक ही जवाब दिया, आकिबत अच्छी होनी चाहिए, दी एंड अच्छा होना चाहिए, वरना आज की दुनिया इंसान के दी एंड को ख़राब कर देती है, इंसान की आकिबत को ख़राब कर देती है। ये इंपॉर्टेंस है दी एंड का और आकिबत का, और इंसान के मौत की तरफ इंसान अपनी तरफ ख्याल करे और इसको बचाने की कोशिश करे। सवाल ये है कि हम किस तरह इसको बचा सकते हैं, कि हम किस तरह जमानत ले सकते हैं, एश्योरेंस ले सकते हैं कि हमारा दी एंड अच्छा होगा। क्या कोई रास्ता है? एक रास्ता कुरान मजीद बताता है, नहीं इसी आय करीमा में जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, आय करीमा कि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतु मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक रास्ता ये कि तुम्हारे पास तकवाए इलाही होना बहुत जरूरी है, अल्लाह का डर होना बहुत जरूरी है। अपने आप को बचाते रहो, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी लम्हात में तुम्हें बचा लेगा। अपने आखिर हकीकत में अपने आप को बचाना काम होता है। हम दूसरों को बचाने की बहुत बात करते हैं, सवाल ये कि तुम अपने आप को भी बचाने का कोई काम करते हो कि नहीं करते हो? तकवा यानी दूसरों को बचाना नहीं है, सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज ये कि मैं अपने आप को बचाऊं, अपने आप को गुनाहों से बचाऊं, अपने आप को डिविएशन से बचाऊं, अपने आप को जहालत से बचाऊं। जितना मैं अपने आप को बचाता चला जाऊंगा, हकीकत में बचता चला जाऊंगा, दूसरी चीज़ों से अपने आप को बचा लूँ, दूसरे प्रॉब्लम से अपने आप को बचा लूँ, जब जितना सेव करता चला जाऊँगा हमारे मेरा अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला बचा लेगा। इत्तकुल्ला हक्का तुकाते, हक्का तुकाते यानी ये तकवा शो ऑफ का नाम नहीं है, तकवा दिखावे का नाम नहीं है। जो हक है तकवा का वो इंसान हासिल करे और उसको अंजाम देने की कोशिश करे। दरमियान में रहे लोगों के साथ रहे, फैमिली के साथ रहे, कम्युनिटी के साथ रहे, प्रॉब्लम्स के दरमियान रहे, मुश्किलात के दरमियान रहे, शहर में रहे और उसके बावजूद अपने दामन को गुनाहों से और मिस्टेक से बचाता चला जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बचा लेगा। इनायतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती हैं। जितना इंसान सही रास्ते पर आगे बढ़ता चला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नेकियों के रास्ते खोलता चला जाता है। नहीं, बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हजरत यूसुफ भागते रहे, एक कमेंटेटर ने कहा है कि दरवाजे बंद किए थे जुलेखा ने, सात दरवाजे थे, पांच दरवाजे बंद किए थे जुलेखा ने, चाबियां जुलेखा के हाथ में है, लेकिन हजरत यूसुफ भागने लगे तो दरवाजे खुलते गए। तो उससे एक फायदा मैसेज जो लिया है कि स्कॉलर ने वो ये कि अगर हम सही रास्ते पर दौड़ते रहें तो बंद दरवाजे भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए खोल देता है। उसका वायदा है कि तुम अपने आप को बचाने की सोचो, फिर हम तुम्हारे लिए रास्ते खोल देते हैं, हम तुम्हारे लिए बंद रास्ते खोल देते हैं, बंद ताले तुम्हारे लिए खुल जाएंगे अगर तुम तकवा इलाही इख्तियार करोगे। तो पहला रास्ता तकवा इलाही इख्तियार करने से इंसान का दी एंड अच्छा होता है। गुनाह पे गुनाह करता जाए बंदा और कहे परवरदिगार मुझे बचा ले, आवाज़ कुदरत आएगी, कम से कम इतनी तो उम्मीद तुम्हारे अंदर बाकी रहे कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बचा सके, वरना कहीं वहां से आवाज़ ना आ जाए अलान व कद असाइद, पूरी जिंदगी गुनाहों में कत्लो गारत गिरी में गुजरी और फिरौन डूबता हुआ कहता परवरदिगार अब मुझे बचा ले, कहीं आवाज़ कुदरत ये ना आ जाए अब तोबा कर रहे हो जबकि वक्त गुजर चुका है जी, वक्त गुजर चुका है, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि इंसान के लिए लौट कर आना दुश्वार हो जाए। तो पहला मरहला यह है कि इंसान तकवा इलाही इख्तियार करे और उस रास्ते पर बंदा साबित कदम रहे जी। रब्बनल्लाह थुम्मा इस्तकामू, तकवा इलाही के बाद इस्तकामत रेजिस्टेंस रहे और इंसान कोशिश करे उसी तकवा के रास्ते में साबित कदम रहे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनायतें होंगी और दरवाजे उसके लिए खुलते जाएंगे, उसका अंजाम भी अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता

था इस शहर में काम करने के लिए, कोई इसका आशना नहीं है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये जब भी मुझे देखता था मुस्कुराता था, या अल्लाह ये जब भी मुझे देखता था मुस्कुराता था। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया या अली इससे बढ़कर नेकी और क्या हो सकती है। अल्लाह अकबर। ये वो चीजें हैं, मैं बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम आती है इंसान के लिए। कहाँ काम आती हैं? आकिबत बचाने के लिए, अंजाम बचाने के लिए। सलवात और ये मोहब्बत है, अली अली के चेहरे को देखना इबादत है, जो देखे और मुस्कुरा दे उसका अंजाम अच्छा हो जाता है। या अली, बहुत शुक्रिया आपका, जो उसे देखे और मुस्कुरा दे उसका ईमान मजबूत हो जाता है। ये आकिबत बकेरी और कई आकिबत बकेरी के वजूहत इंशाल्लाह कभी किसी और मजलिस में इशारा करूँगा। खसूसी तौर पर माँ बाप की रिजायत, माँ बाप को खुश रखना, माँ को खुश रखना खसूसी तौर पर यह जरिया बनता है अपने आकिबत को बचाने के लिए, अपने आकिबत को बचाने के लिए। नौजवान था, मुँह से जबान से कलमा नहीं निकल रहा था। पैगंबर इस्लाम ने पूछा इसकी माँ जिंदा है? तो हाँ या रसूलल्लाह इसकी माँ जिंदा है। कहा उसको बुला के ले आओ। माँ आई तो पैगंबर इस्लाम ने उस माँ से पूछा क्या तू इस नौजवान से राजी है? माँ ने कहा नहीं या रसूलल्लाह, इसने मुझे बहुत परेशान किया, मैं इससे नाराज हूँ। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जब तक तू राजी नहीं होगी ये तेरा नौजवान बच्चे के मुंह से कलमा नहीं निकलेगा, इसकी जबान से कलमा नहीं निकलेगा। नहीं या रसूलल्लाह, इसने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है। अतः रिवायत कहती है पैगंबर इस्लाम ने माँ के आंखों से पर्दे को हटाया, माँ देखने लगी कि उसका बच्चा आग में जल रहा है, जहन्नम की आग में जल रहा है। पैगंबर इस्लाम फरमाया क्या तू गवारा करेगी? माँ माँ होती है, माँ को मनाना भी बहुत आसान है। क्या या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चे को जलता हुआ नहीं देख सकती? जाओ मैंने बच्चे को माफ़ कर दिया। जब माँ ने माफ़ किया तो नौजवान के जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये आकिबत बखैर हुआ कि नहीं हुआ? जब तक माँ राजी ना हो, बाप राजी ना हो और उनकी रिजा हासिल करने की बंदा कोशिश ना करे, उस वक्त तक इंसान की आकिबत अच्छी नहीं होती है। कोशिश करें, दुआएं करें। इवन मैं रिवायतों में देख रहा था तो मौत के बाद भी माँ बाप को राजी किया जा सकता है। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले भी गए हो किसी के, तब भी इंसान अपने आमाल से, अपने किरदार से माँ बाप को राजी कर सकता है ताकि अपनी आकिबत को बंदा बचा ले। आयतुल्लाह मराशी नजफी बहुत ही मशहूर आलिम दीन, जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई है कौमुल मुकद्दस में, बड़ा काम किया। इन्होंने आपसे पूछा गया आपको इतनी इज्जत और आपको ये खिदमत का मौका कैसे मिला? हर आलिम को वो इज्जत नहीं मिलती, हर आलिम को वो खिदमत का मौका नहीं मिलता। एक यूनिक काम, मराज कराम में देखा होगा आपने, मराज कराम ज़्यादातर इस तरह के कामों में नज़र नहीं आते। जैसे लाइब्रेरी कोई मरजा तकलीद बना दे, कोई मरजा तकलीद हॉस्पिटल बनाए मसलन, नफ्से नफी शौक अपना शौक हो तो कम नज़र आते हैं। अयतुल्लाह मराशी नजफी मरज तकलीद थे, मुश्तहिद थे, तो आपको ये कैसे तौफीक हो गई कि आपने इतनी खिदमत की अहले बैत की? सारी दुनिया से आपने किताबें जमा की जो अहले बैत की शान में लिखी हुई हैं, पुरानी किताबें, नुस्खे वाली किताबें जमा की आपने। बड़ी लाइब्रेरी कौमुल मुकद्दस में मौजूद है, जब भी ज़ियारत के लिए जाना उस लाइब्रेरी की ज़ियारत भी कर लेना, वहीं पर आपकी कब्र है, वहीं पर आपकी कब्र भी, आपकी कब्र की ज़ियारत भी हो जाएगी अयतुल्लाह मराशी नजफी की। और आपने की कब्र वहाँ होना इस बात की दलील है कि आदमी जब तक किसी काम के लिए अपनी ज़िंदगी खर्च नहीं करेगा वो काम कम्प्लीट नहीं होता है। वहीं पर आदमी जिंदा ज़िंदगी गुजारे, वहीं मर जाए तब जाकर ये काम कंप्लीट होता है, ये काम नतीजे तक पहुंचता है, उसका अंजाम अच्छा होता है। तो आपको ये मौका कहाँ से मिला? तो आप कहते हैं भाई आयतुल्लाह मराशी नजफी मरहूम कि मेरी माँ ने मुझसे कहा जाओ बाप को खाने के लिए ले आओ। जब मैं बाप के कमरे में गया तो मेरा बाबा सो रहा था, खाने का वक्त था और उसको खाना भी चाहिए था। मेरी माँ का हुक्म था कि मैं बाप को जगाऊँ और ले आऊँ, और मैं बाप को जगा नहीं सकता था, एहतराम में पिदर में मैं बाप को जगा नहीं सका आवाज़ देकर। तो मैं बाप के पैरों के करीब आहिस्ता से बैठ गया और बाप के पैरों को दबाने लगा, बाप की खिदमत करने लगा। थोड़ी देर के बाद मेरे बाप ने जब मेरे हाथों की नमी महसूस की या गर्मी महसूस की, मेरे बाप की आंखें खुली तो मेरे बाप ने पूछा क्या कर रहे हो बेटा यहाँ, मेरे पैर क्यों दबा रहे हो? कहा बाबा मेरी माँ ने कहा मैं आपको ले जाऊँ लेकिन मैं आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। तो बाप की आंखों में आंसू आए, बाप ने हाथों को बुलंद किया, दो दुआएं की, परवरदिगार तुझे दुनिया में इज्जत अता करे और तुझे अहले बैत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वो बाप की दुआ थी जो मुझे इज्जत भी मिली और अहले बैत की खिदमत का मौका भी मिल गया। इसलिए किसी बुजुर्ग स्कॉलर ने कहा है बड़े लोग जहां भी पहुंचे हैं

उनके पीछे एक कई राजों में से एक राज यह है कि उन्होंने अपने मां बाप को तनहा नहीं छोड़ा। आयतुल्लाह मुताहिरी कहते हैं, जो आज मुझे इज्जत मिली है पता है किस चीज का नतीजा है? हौजे में पढ़े हैं आपने, किताबें बहुत पढ़ ली आपने, नहीं, इनकी वजह से इज्जत नहीं मिली है। आयतुल्लाह मुताहिरी कहते हैं, जो मुझे पॉकेट मनी मिलता था हौजे में, उसमें से मैं कुछ पैसे बचाकर अपने माँ बाप को भेजता था ताकि उनको कोई इकोनॉमिक परेशानी ना हो। उसके नतीजे में मैंने माँ बाप से दुआएं ली और दुआओं के नतीजे मुझे इज्जत मिली और शोहरत मिली है। कभी कभार हम चीज़ों को छोटा समझते हैं लेकिन वो चीज़ें इंसान की आकिबत के लिए बहुत काम आती है, अंजाम अच्छा हो जाता है। समेट दो अपने मतालिब को। मैंने क्यों ये मौजू छेड़ा दिया, अंजाम अच्छा होना चाहिए, दी एंड अच्छा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमी हज़रत मासूमा कौम की ज़ियारत नसीब करे। कभी ज़ियारत पर जाइए, ज़ियारत पढ़िएगा, अगर जा नहीं सकते यहाँ खड़े होकर ज़ियारत पढ़िएगा। उस ज़ियारत में एक जुमला ये है, जो दो बातें हैं इस जुमले में, उस ज़ियारत में दो बातें हैं, एक जुमला ये है, एक बात यह है उस ज़ियारत में, परवरदिगार हम तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अन तख्तिम अली बिस्सआदा। मासूम कुम के हरम में खड़े होकर हम दुआ करते हैं, परवरदिगार यहाँ आ जाना कमाल नहीं है, यहाँ से आकिबत बखैर बनना कमाल है। परवरदिगार मेरा अंजाम अच्छा हो जाए, और अंजाम अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन शख्सियत का जरिया और वसीला हम करार दे सकते हैं वह हज़रत मासूम कौम सलामुल्लाह अलैहा का है। सलावत पढ़े मोहम्मद अलैहि जी। बात आप तक पहुंच गई तो उस हरम में खड़े होकर या ज़ियारत रुख करके हरम की तरफ हम ज़ियारत में कह रहे हैं, परवरदिगार मेरी आकिबत अच्छी होनी चाहिए, परवरदिगार मेरे अंजाम को बचा ले, परवरदिगार मेरे दी एंड को अच्छा बना दे, तुम्हें कामयाब। और वो दी एंड अच्छा कैसे होता है? वो मासूम कौम के वसीले से, मासूम कौम की ज़ियारत से। और उसी में ये दुआ है कि परवरदिगार हमें उनकी शफ़ात नसीब फरमा, और आपकी शफ़ात से इंसान का अंजाम अच्छा हो जाता है। एक दुआ, एक बात ये है उस जुमले में, मेरा अंजाम अच्छा होना चाहिए, और दूसरी बात उस जुमले में ज़ियारत में ये है कि परवरदिगार जिस पोजिशन में मैं हूँ एज ए ज़ायर, एज ए मुहिब्बे मासूम कौम, आपका चाहने वाला, जिस पोजीशन में मैं हूं परवरदिगार उस पोजीशन से मुझे दूर ना करना। अल्लाह अकबर। जो स्टेटस मुझे मिला है एज ए जायर का स्टेटस, मुहिब्बे अहले बैत का स्टेटस, उस स्टेटस को मुझसे न लेना। वो स्टेटस रहेगा तो आकिबत खुद ब खुद बनती चली जाएगी, वो मोहब्बत रहेगी तो आकिबत बनती चली जाएगी। अल्लाह अकबर। कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमारे लिए अहल बैत अलैहिस्सलाम ने अपने अंजाम को बचाने के कई रास्ते खोल दिए हैं, कई रास्ते खोल दिए। उन रास्तों में से एक रास्ता याद अहल बैत अलैहिस्सलाम, जिक्र अहल बैत अलैहिस्सलाम है, और जिक्र के नतीजे में आंख से निकलने वाला आंसू इंसान को इस दुनिया की परेशानी और मुसीबतों से बचा लेता है, और इंसान के दी अंजाम दी एंड को अच्छा बना देता है। ये निकलने वाले आंसू मामूली चीज़ें नहीं हैं। आज हम जमा हुए यहाँ पर एक बीबी को याद करने के लिए जो अपने भाई की जुदाई में अपने शहर को छोड़कर निकलती है, मदीने को छोड़ा, आठवें इमाम की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहाँ पहुँची जहाँ पर भाई के मुलाकात के इम्कानात हो सकते थे। सैकड़ों मील का सफ़र तय किया, हज़ारों मील का सफ़र तय किया, सफ़र की जहमतों को बर्दाश्त किया सिर्फ भाई से मिलने के लिए। हमारे बाज़ उलमा कहते नहीं, सिर्फ भाई से मिलने के लिए नहीं, एक इमाम का साथ देने के लिए। विलायत के रास्ते पर कैसे चला जाता है, अगर किसी ने सबक दिया है तो मासूम कौम ने सबक दिया है। भाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं की, आप निकली लेकिन आप की मुलाकात भाई से नहीं हो सकी, सावे में बीमार पड़ी, आपको कौम पहुँचाया गया। उम में 17 दिन आप जिंदा रहीं, जिस घर में आप नमाज पढ़ती रहीं, आपके वजूद बाबरकत से वो घर बैतुन नूर बन गया, लोग आपसे मिलने के लिए आते रहे। इसलिए कि अहले बैत की जहां भी फर्द जिस शहर में चली जाए, जिस टाउन में चली जाए, उस शहर को, उस टाउन को वो शख्सियत मुनव्वर बना देती है। ये आज जो कौम चमक रहा है ये मासूम कौम के वहाँ दफन होने के नतीजे में, वहाँ मासूम कौम के पहुँच जाने के नतीजे में,
آج شہر وہ علم کا مرکز بن گیا.

जहां सूरज को दफना दिया जाता है, वहां से जो शुआएं निकलेंगी पाकिजगी की शुआएं निकलेंगी, वहां से इल्म की शुआएं निकलेंगी, वहां से अमल की शुआएं निकलेगी। अपने भाई की जुदाई को बर्दाश्त नहीं किया और आप चली और कौम में इस दुनिया से चली गई, सिर्फ जुदाई बर्दाश्त नहीं की, लेकिन मैं कहूँगा मासूम कौम, एक और बहन है करबला में जो भाई से जुदा होना नहीं चाहती थी, जो भाई के साथ चली थी मदीना से करबला, लेकिन करबला से जब वो बहन निकल रही थी तो भाई से जुदा हो रही थी, लेकिन किस हालत में उसने भाई को देखा तारीख बयान नहीं कर सकती। अरे तारीख इतने मसाइब वहां पर थे कि तारीख बयान करने से कासिर है। आपने भाई को नहीं देखा, जुदा हो गई उस दुनिया से चले गई, लेकिन जैनब ने भाई को देखा है, लेकिन किस हाल में देखा है मैं कैसे बयान करूं। एक जुमला ज़ैनबे कुबरा की जबान से निकला, अंताकी या हुसैन, ऐ भाई हुसैन तेरे बदन पे इतने जख्म हैं कि तू पहचाना नहीं जा रहा है, तू पहचाना नहीं जा रहा है। ये नहीं कि जैनब ने यह जुमला कहा कि तुम ही मेरे भाई हो, जैनब ने रुख किया मदीने की तरफ, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और फरिश्तों का आप पर दुरूद और सलाम हो, आइए देखिए करबला, जिस हुसैन को आपने मदीने में देखा था वो हुसैन और है, जो हुसैन करबला में है वो और है। मुकत्ताउल आदा, बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, अरे मुरम्मलुन बिद्दिमा, ये बदन खून से भर चुका है, और इसके रिश्तेदारों को इसके बहनों को जालिमों ने असीर बना लिया है। ज़ैनब ने अपने भाई को देखा, वो देखने का अंदाज, वो देखने का तरीका ही और था, या मसाइब ही मसाइब है। और एक जुमला ये कि बहन ने भाई की बर्दाश्त फिराकत को बर्दाश्त नहीं किया, और जो दूसरा अल्लाह मर्रशी नजफी के वालिदा मरहूम ने 40 शब ज्यारत आशुरा पढ़कर इन्होंने दुआ की अल्लाह की बारगाह में, मैं शहजादी कौनैन हजरत जहरा का मजार देखना चाहता हूं। आखिर कब्र है कहां बीबी की? क्या आरजू है उस आलिम दीन के, क्या आरजू है? अगर कोई मुसाफिर आता है कब्रिस्तान में, अगर वो बच्चा हो किसी माँ का और एक जमाने तक माँ की कब्र ना देखी हो, कितनी परेशानी से वो ढूंढता है कब्र को, कितने लोगों से पूछता है मेरी माँ की कब्र कहाँ है। ये फर्जंद फातिमा ढूंढ रहा है, दुआ कर रहा है, परवरदिगार मुझे दिखा दे कि शहजादी की कब्र कहाँ है, मैं जाऊँ कब्र पर बैठूँ और कब्र पर जियारत पढ़ सकूँ। किसी इमाम ख्वाब में इमाम से मुलाकात होती है, इमाम कहते क्या ढूंढ रहे हो, कहा शहजादी की कब्र ढूंढ रहा हूँ। इमाम फरमाते नहीं, वो कब्र पर्दे में रहेगी, ये मसलहत है कि वो पर्दे में रहे, अगर जियारत ही करना चाहते हो हमारी बेटी कुम में मौजूद है, अरे इस फातिमा की जियारत कर लेना, गोया तुमने उस फातिमा की जियारत की है जो जन्नतुल बकी में है या रोज़े पैगंबर इस्लाम में है, और आप मुतमईन हो गए, आपने फातिमा मासूमा की जियारत कर ली। लेकिन मैं कहूंगा इस कब्र में उस कब्र में बहुत फर्क है, इस कब्र पर रोजा बना है लेकिन वो कब्र आज भी वीरान है, इस कब्र पे जाहिर आते हैं उस कब्र पर कोई जाहिर नहीं, बस आजाद दारो, इस कब्र पर चराग रोशन है लेकिन 1400 साल गुजर गए, कब्रे फातिमा कल भी वीरान थी आज भी वीरान। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिद दालिमीन, سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين.

0: कैसी खौफनाक आग है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह ब्रादान पहुंच गए, जल्दी करें जल्दी करें।
2: उस दिन जब तुमने अपने गंदे मुंह से हिलाल का नाम लिया, कहा था तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हिलाल तक पहुंचने की, तुम इस हद तक गिर चुकी हो कि मेरे शौहर की चुगली करो।
3: अपने अमीर इब्ने जियाद से कह देना कि मेरे दामाद का दिमाग खराब हो गया है, मेरा कत्ल ही उसके हक में बेहतर है।
1: अगर हसब और नसब का किस्सा है, सामिया की निस्बत में मैं तुमसे ज्यादा गरीब हूँ।
4: इस कदर हराम लुकमा खाने वाली कैसे हमें नजर नहीं आई,
2: इस बार फर्क है।
3: क्या फर्क है?
2: इस तिफल की गर्दन पर तुम्हारा हक है और तुम इसके बाप हो। कबूल कर लिया।
0: ये चोर आखिर कौन था?
4: सामिया, हिलाल की माँ।
1: कूफे वालों की बातों को सुनो लेकिन यकीन हरगिज मत करना।
2: सही फरमाया, लेकिन इस बार लोगों की बातें बिल्कुल सच साबित हुई हैं। आपका बेटा कर्बला में है।
4: तुम्हारी बेटी मेरी माँ का हाथ पकड़कर भगा ले गई, लेकिन वापस नहीं आई, ना ही कोई खबर आई। अब तुम हकीकत बता दो और मेरी माँ को मेरे हवाले कर दो, वरना सबके सामने तुम्हें जलील कर दूंगी।
0: बाहर निकालो इसे।
5: नईम, नईम, नईम, इस आदमी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला,

0: क्या असल बात बताओ और मेरी माँ को वापस पलटा दो, वरना देर नहीं लगाऊंगी तुम्हें रुसवा करने में।
1: इसे बाहर कर दो।
0: मैं तुम्हारी नियत से बाखबर हूँ, क्या तुम्हारे घर वाले भी जानते हैं? बताओ मुझे, अगर मेरी माँ का पता बता दो तो ठीक है, वरना खुदाए काबा की कसम तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल कर दूंगी।
1: तुम्हारा जो दिल करता है करो।
2: बाहर निकालो इसे।
0: नईम, इसी ने तुम्हारी बीवी को मार डाला। इसी मर्द ने मेरे भाई की शादी के वक्त तुम्हारे बाप के हुकुम से तुम्हारी बीवी को तिजारत खाने में ले जाकर मार डाला।
3: ज्यादा ना बोलो औरत।
1: खामोश हो जाओ झूठी औरत, डूब मरो। झूठ बोल रही है ये।
0: सुना तुमने बहादुर आदमी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया, पता है तुम्हें? तुम्हारी बीवी के कत्ल का हुक्म दिया।
1: बाहर निकालो, बाहर फेंक दो इसे।
0: तुम्हारे बच्चों को यतीम किया है इसने।
1: बाहर निकालो।
0: झूठ
1: बोल रही है ये, एकदम झूठ बोल रही है। बाहर निकालो इसे।
4: आराम से,
0: मेरी माँ का।
1: बाहर कर दो इसे।
0: मुझे
1: देखा, यही सुनना बचा था कि हमारे ऊपर औरत के कत्ल का इल्जाम लगाया जाए। इनास, ये क्या हुआ?
0: मेरी माँ कहाँ है? बताओ मुझे नायला, मेरी माँ कहाँ है?
5: शांत हो जाइए, बस कीजिए।
0: चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा।
5: नहीं, क्या ये सच कह रही है? तुम्हारी बीवी को इसी तरह कत्ल किया गया है, ये तुमने किया या बाबा ने? बोलो, फिर इसने सही कहा है? कैसे इंसान है बाबा? इसी घर में रहने वालों के साथ आपने ऐसा किया? मुझे मक्का के रास्तों में बेवा कर दिया, बेटे की सौजा को कत्ल कर दिया। मेरी माँ को कब कत्ल करने वाले हैं? खतरनाक है।
1: तुम भी सच मान रही हो ना?
6: मुझे अम्मी के पास जाना है।

0: तुम पर कुर्बान हो जाऊं ऐसे मत रो, झूठ बोला है। इसकी माँ भी तुम्हारी माँ की तरह गायब हो गई है, वो हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही है ताकि उसे तलाश कर सके, इसीलिए झूठ बोल रही है। मेरी जान ऐसे मत रो, झूठ बोला है उसने, यकीन मत कर।
1: तो अब्बू ने ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा, वो सच कह रहे थे।
0: उसने ऐसे ही कहा है।
1: मुझे यहाँ डर लगता है, मुझे दादा से बहुत डर लगता है, मुझे इस घर से ले चलो, अप्पा के पास ले चलो।
0: ठीक है, मैं वादा करती हूँ, तुम रो मत मेरी जान, ठीक है, अभी तुमको ले चलती हूँ, मत रो बेटा।
2: तुमने भी यकीन कर लिया ना, जो भी इस घर में घुस आएगा तुम सबकी बात पर यकीन कर लोगी सिवाय मेरे।
0: अगर ये झूठ नहीं है तो बताओ तलमा कहाँ है, बताओ कहाँ है वो?
2: अगर मैं जानता होता तो उसका सर काम कर देता, इसमें शक ना करो। उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था, अगर जाना ही है तो तुम यही रुको, मैं खुद चला जाता हूँ।

0: कौन सी जगह है?
1: नैनेवा। क्या मेहमान नवाजी है नैनेवा में? इससे ज्यादा थे, बीच रास्ते में कुछ फरार हो गए। अगर आपका हुक्म हो तो उनके लिए फरमान जारी कर दिया जाए कि उन्हें कहीं अमान ना दिया जाए, ना खुद उन्हें ना उनके खानदान वालों को। अलवान बिन हज्जाज कहाँ है?
2: उस तरफ।
1: मेरे वापस आने तक यहीं रहना।
3: आज की रात पहली बार मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं जनाब बिन हज्जाज। जब भी मैं कूफे पलटने का इरादा करता हूं तो किसी बहाने से रोक लिया जाता हूं। मुझ पर खाने पीने और सामान पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, मैं इससे ज्यादा और यहां नहीं रुक सकता।
4: मरहबा, देखो कौन आया है। इब्ने अहद, खुश आमदीद। हक यह है कि मैदान तुम्हारे बिना खाली है जंगजू। इतना गुस्सा कर रहे थे, देखो गैब से गवाह आ गया। जो खत लेकर आए थे उसमें लिखा था कि तीरंदाजी में तुम कूफियों के दरमियान मशहूर हो।
1: कूफे का वाहिद तीरंदाज, दुख्तरे औहद का उस्ताद, औहद का दामाद, कम मशहूर नहीं है जनाब।
4: खत में ताकीद थी कि यहाँ रुको और उमर इब्ने साद के लश्कर में खिदमत करो। इस्लाम का सिपाही बनना मुबारक हो हिलाल, ये पहन लो।
1: मुबारक हो।

ए मेरे अल्लाह, ए रहम करने वाले, ए मेहरबान खुदा, तू इस बात का शाहिद और नाजिर है कि बगैर तहारत और वुजू के मैंने

0: माँ नहीं खिलाया। माना मैंने नमाज शब में तेरी बारगाह में इल्तिजा नहीं की कि मेरा बेटा कभी जालिम और जाबिर का हम नशीन ना बने। ए खुदा, कहां मुझसे खता हुई, कहां मैंने गलती की है। मैंने हमेशा अपने बेटे का शिकवा किया लेकिन कभी भी उसकी तरबियत में कोताही नहीं की और तेरे फजलो करम पे शक नहीं किया। मीसम ने सच कहा था, मीसम कहता था सामिया खुदाई तदबीर का इंतजार करो। मैंने नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना। खत लिखा और खुद को ही परेशानी में डाला और अब तो मैं अपने बच्चों को भी नहीं संभाल सकती। खुदाया, खुदाया, ए खुदा मेरी मदद कर। ए खुदा मैं तेरी पनाह चाहती हूँ खुद से। ए खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कि माबूद मैंने तुझसे गफलत की। ए खुदा माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे या अली, माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। ए अली आपकी मजलूमियत और हक्कानियत मैंने महसूस की है, या अली मेरी शिफात कीजिए। ए खुदा मुझे माफ कर दे। ए खुदा मेरे बेटे इस्माइल, मेरा हिलाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, उसका सरतन से जुदा हो जाए लेकिन वो किसी मजलूम का खून ना बहाए। ए खुदा मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा ताकि तेरे करीब हो सकूं। खुदाया, ए खुदा मेरी मदद फरमा।
1: काश कि मैं मर गया होता और ये चंगे लिबास पहनने का वक्त नहीं आता।
2: क्यों यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो, घर वापस चले जाओगे, डरने की जरूरत नहीं है।
1: विनोहद अगर आज भी तुम अपनी बात,
2: तुम घर वापस चले जाओगे ना कि नायला के पास।
1: ठीक है नायला, नायला मैं पहले ही इस जहन्नुम में चल रहा हूँ।
3: मैं इंतजाम करता हूँ जी।
2: हकीकतन जनाब इब्ने हज्जाज, एक अमानत लेकर आया हूँ जनाब इब्ने साद के लिए।
4: आधा लश्कर मैदान जंग छोड़कर भाग गया इब्ने औहद, तुम्हारे अंदर चंद सिपाहियों को रोकने की भी सलाहियत नहीं है कि किस अहमक ने तुम्हारे हवाले अमानत की है।
2: खुदा का शुक्र कि तुम्हारी जैसी बहादुरी मुझ में नहीं है, मुझ में इतनी जुर्रत है कि मैं बगैर खौफ के गुफ्तगु कर सकता हूँ।
4: अस्तग़फिरुल्लाह, क्या अमानत लाए हो?
2: नैनेवा की तरफ लश्कर लेकर निकलने से पहले मेरे हवाले एक खत किया है।
4: कहाँ है?
2: चूंकि अमीर ने मुझे अमानतदार समझा था लिहाजा मैं अपने हाथों से यह अमानत तुम्हें दे रहा हूं।
4: कोई जरूरत नहीं, जंग का मैदान तुम्हारे सुकून की जगह नहीं है।
2: बेवकूफ आदमी,
1: मैं इसीलिए आया था कि दोबारा कूफे पलट जाऊं। नायला की कसम अगर मुझे कूफे वापस नहीं भेजा तो मैं ऐसी जंग में अपनी जान दे दूंगा जिसका इल्जाम तमाम लश्कर के सर आएगा।
2: बकवास बंद करो, मैंने कहा कि अगर अभी खामोशी इख्तियार कर लो जंग शुरू होने से पहले तुम्हें रवाना कर दूंगा।
1: अब तक जितना मैंने तुम्हें देखा है कोई अहमक ही होगा जो तुम्हारी बातों पर यकीन करेगा।
5: बाबा अब खत्म हो गया।
1: बच्चे को क्यों करबला लाए हो?
2: जरा उस तरफ जाओ, वहां खाना भी है और पानी भी।

0: बच्चे किनारे हटो।
1: आखिरत की सजा का खौफ मत करो, ये ठीक नहीं, वहां बख्श दिए जाओ। इत्मीनान से इसके सर को तन से जुदा करो।
2: आपने कहा कि इसका खून हलाल है तो हलाल है,
1: हलाल।
2: लेकिन माफ कीजिए, मुश्किल ये है कि मेरा दिल बहुत बहुत कमजोर है।
1: जरा फिर से,
2: मैं हरगिज इस काम को अंजाम देने की ताकत नहीं रखता।
3: खून से डरते हो?
2: थोड़ा सा।
1: घबराने की कोई बात नहीं है दोस्त, दो बार सर जुदा करोगे तो आदत हो जाए।
2: नहीं, मैं तमाम मुकद्दसात की कसम खाकर कहता हूँ कि यह काम मुझसे नहीं हो सकता।
0: यहाँ क्या कर रहे हो बुज़दिल बदबख्त इंसान?
2: सबको आने का हुक्म दिया गया था, किसी को इख्तियार नहीं था। कोई माल गनीमत लेने आया था तो कोई आया था इनाम हासिल करने के लिए। मैं गुलामों को बेचता हूँ, गुलामों को। और तुम सब जिहाद का सवाब लेने के लिए मैं भी इसीलिए आया हूँ कि कनीज और गुलाम को लेकर यहाँ से जाऊँ और उन्हें बेच दूँ। बस
4: उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, सब जंग के लिए आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, जल्दी
1: चलो। जो आपने कहा वो आपका हुक्म था या खत में लाया हूँ उसमें फरमान था?
4: मेरे अमीर इब्ने ज़ियाद का हुक्म खुद मेरा हुक्म भी है।
1: बस मैं लश्कर को लेकर जाता हूँ फुरात के रास्ते को बंद करने।
4: तुम भी हमारे साथ रहो फुरात के रास्ते को बंद करने के लिए, अपने कमांडर को भी साथ लेते आओ।
1: जसारत ना हो लेकिन इतनी तलवार चलाने वालों के बाद पानी बंद करना मेरी नजर में सिवाय वक्त की बर्बादी के कुछ नहीं। अगर हमला कर दें तो जोहर से पहले ही उनका काम तमाम हो जाएगा।
5: सुना है कि उनके काफिले के ज्यादातर लोग औरतें और बच्चे हैं, अगर फुरात का रास्ता बंद कर दें तो सब मारे जाएंगे।
4: आज का दिन अमीरुल मोमिनीन उस्मान के खून का बदला लेने का दिन है। हम वही काम करेंगे कि सब प्यासे मर जाएं।
1: खुदा उसे माफ करे।
5: हुसैन इब्ने अली ने तो कुछ नहीं किया था।
4: उनके बाद बाप का बदला उसके बेटे से लिया जाएगा।
5: वैसे तुम तो जनाब हानी के साथ थे ना? मैंने सुना है कि उन दिनों अली असलन मदीने में मौजूद नहीं थे।
4: खामोश हो जाओ। इतने साथ के सिपाहियों का लिबास पहनकर तुम अली की तरफदारी बिल्कुल मत करो।
5: एक तरफ अपने लश्कर की कसरत पर इतना फक्र है और दूसरी तरफ पानी बंद करने की तैयारी। वक्त पड़ेगा तो तलवार भी चलाओगे।
4: जंग तो होना ही है बच्चे। जो भी हमारे दीन के मुकाबले में आएगा और बैत के लिए सर नहीं झुकाएगा कत्ल कर दिया जाएगा।
5: कौन सा दीन?
1: हिलाल, एहतियातन पानी बंद करने के बाद शायद वो लोग बैत के लिए सर खम कर दें और हमारे दरमियान जंग ही ना हो। सलाम हो हमारे अमीर इब्ने ज़ियाद पर।
4: क्यों ऐसी बात कर रहे हो नईम?
1: क्यों
4: क्यों? इब्ने ज़ियाद ने यजीद को सर देने का वादा किया है। जो लोग खैमे के बाहर हैं वो सब जमीन और माल गनीमत के लालच में यहाँ आए हैं। अभी कुछ मिला नहीं और कह रहे हो जंग नहीं होगी?
6: अरे लोगों, आज तुम लोगों ने जिसका रास्ता रोका है जानते हो वो इस सरजमीन पर रसूल खुदा का तन्हा फरजंद है। क्या तुम्हारे दरमियान में कोई एक ऐसा है जिसने हमारे इमाम से कोई खता देखी हो सिवाय मेहरबानी मोहब्बत और दिलसोजी के, जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात को हल करने में गुजार दी? अगर आज वो इस सरजमीन पर मुश्किलात में घिरा है तो तुम्हारी दावत पर आया था वो

0: आपके मेहमान आए हैं जनाबे औहद।
1: बालिया, तुम तो शाम गई थी।
2: तुम समझते हो कि तुम बहुत होशियार हो? तुम्हारे आसपास की औरतें मेरी मुट्ठी में हैं। बेटियों का सौदा करने वाले बेगैरत।

0: एक बार फिर तुम्हारे खानदान का खून उसकी रगों में जोश मारने लगा है, और ये लड़की भी तुम्हारी और अपनी माँ की तरह इतना ज्यादा हराम माल हमारे दस्तरखान पर ले आई कि अगर मैं उसके बदले अपने तमाम माल को सदका दे दूं और बची हुई उम्र को रोजे में गुजार दूं ताकि बदन का गोश्त हराम माल से पाक हो जाए, तब भी मुंह से बू नहीं जाएगी। इस तरह का तैयार किया हुआ जहर भी अब तुम ही पियो, तुम और तुम्हारी चहेती। मैं बेगैरत हूं, मैं बेगैरत हूं कि इसको कत्ल करने की ताकत नहीं है मुझ में, मैं बेगैरत हूं कि तुम्हारे पास इसकी इल्तिजा लेकर आया हूं। तुमने मुझे खुद फंसाया है, अब तुम खुद ही इससे निजात दिलाओगे।
1: अल्लाह अकबर, देख रही हो, देख रहे हो कि खुदा ने नेमत किसे अता फरमाई है, बताओ मैं क्या करूं।
0: कुछ लोगों ने इस वाकये को आधा अधूरा सुना है और एक दूसरे को बता रहे हैं। खुदा की कसम, अगर शियों को पता चल जाए कि वो जिंदा है तो मेरी निगाहों के सामने उसके सिर को कलम कर देंगे। कुछ ऐसा करो कि कूफे से चली जाए।
1: ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या तुम अंधे हो गए अबू शमीन? कूफे के हालात नहीं जानते कि कैसे खतरनाक हो गए हैं?
0: तुम्हारी पहुंच बहुत है, तभी फरियाद लेकर आया हूं मैं।
1: कूफे के हालात ऐसे नहीं रहे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ा सब्र करता और इस बहादुर लड़की की कद्र को समझता, के बाद तुम्हारे लिए इफ्तिखार और सरबुलंदी का सबब बनती।
0: जो औलाद राह हक को ना पहचाने वो हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार नहीं हो सकती, हमारे लिए वबाले दुनियाओ आखिरत है।
2: हक को नहीं पहचाना?
0: तुम हक के बारे में क्या जानती हो?

0: मुझे जानने की जरूरत नहीं है, यही काफी है कि आप जानते हैं कि उम्मत का क्या हाल हुआ है। नहीं देखते, बदबख्ती और इख्तलाफ का असली सबब वही है जिसके लिए आपने अपनी पूरी उम्र गरेबान को चाक किया, समझे आप?
1: तुम गोद में थी जब अली तख्ते हुकूमत पर बैठे थे, तुम्हारी गलती नहीं है कि उन्हें ना पहचाना। जो भी आले अली के खिलाफ काम किया गया वो बेनतीजा रहा, तुम्हारा फायदा खानदाने पैगंबर की नाबूदी में था।
2: अच्छा हुआ अबू शमीन मेरे पास गदाई के लिए आ गए, वरना मेरे सर को तन से जुदा कर देते।
0: आखिर आप कब इस बात को समझेंगे कि अंबियों की जन्नत मालो सर से बनती है, ना कि अदलो इंसाफ से? अगर मालो दौलत होगी तो जन्नत भी बना सकते हो, वरना ऐसे ही रह जाओगे।
1: ले लो नासबियों की मालो दौलत और इज्जत।
0: अगर अमवी बुरे होते तो शियाने अली में से किसी का हाथ गदाई में उनके सामने ना होता। तुमने कितने अलवियों को देखा है जो अपने बाल बच्चों का ख्याल रखते हैं, बताओ मुझे।
1: अफसोस है मुझ पर कि आले अली की अदावत हमारे दिमाग तक सरायत कर चुकी थी और उस समय मैं बेखबर था।
0: खुदा की कसम अपने किए पर मैं जर्रा भर भी परेशान नहीं हूँ।
1: निकल जाओ यहाँ से, अपने मुंह को बंद कर लो। किस चीज से पाशमान नहीं हो, कत्ल से या किसी? छोड़ो मुझे,
2: चुप हो जा। आखिर मुंह से बात निकल गई, मेरे खानदान और कबीले को जो कहा मैंने कुछ नहीं कहा। उस शख्स के होते हुए दूसरे दुश्मन की जरूरत नहीं, खुद तुम्हें कत्ल करके दफन कर देगा। तुम्हारा कूफे में रहना और इस दीवाने के घर रहना बिल्कुल सही नहीं है। मैं तुम्हें कूफे से निकलने की इजाजत खुद दूंगा। अगर तुम खुद मर्द होते तो पिछले सात के खौफ से तुम खुद भी कूफे में नहीं रुकते जनाब।
3: तुमने तो लश्कर को यहाँ तक पहुँचा दिया, अब चलो शाम, मेरी माँ कब तक इंतजार करेगी? आपने तो मुझसे वादा किया था, क्या भूल गए हो?
4: नहीं, हमारा ये वादा नहीं था। वादा था जंग के बाद शाम के लिए रवाना होंगे, ना कि लश्कर को पहुंचाने के बाद।
3: जंग तो बच्चों की जगह नहीं है।
4: 100 बार तुम्हें कहा होगा कि अलवान जंग बच्चों की जगह नहीं है, लेकिन तुमने सुना नहीं। शायद बाप से ज्यादा चचा के कारनामे तुम्हारे लिए अजीज थे। अब जो मैंने कहा वही होगा, जंग के बाद निकलेंगे।
3: मैं तो कहता हूँ बाबा, खुदा के लिए ना रुकिए।
5: आली जनाब, हुक्म आया है कि फरार करने वाले जिन्होंने अमीर को कत्ल करने की साजिश की थी, लश्कर के सामने उनकी गर्दन उड़ा दी जाए। उन लोगों ने वसीयत के लिए मोहलत मांगी थी।
4: नमाज के बाद आता हूँ।
3: मर्द नहीं है कि अपने वादे को पूरा करे। आप मत जाइए, मैं खुद अकेले शाम के रास्ते को तलाश कर लूंगा।
1: मुसाफिर कूफे के लिए, मुसाफिर कूफे के लिए।
3: क्यों कूफे?
4: कूफे जाओगे? तुम ही बार बार चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी माँ कूफे में है, ना कि शाम में।
3: वापस आ गई?
4: वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी।
3: वो कहीं नहीं गई थी, वो हमेशा से कूफे में थी। बाबा झूठ मत बोलो, मत बोलो झूठ। झूठ मत बोलो बाबा।
4: इसको ले जाओ कूफे, कूफे ले जाओ।
1: पानी, पानी।
4: औहद के तिजारत खाने में जाना, तुम्हारी माँ की कब्र वही है। उसकी माँ की कब्र पर इतना रोना कि दिल हल्का हो जाए।
6: हुक्म आया है कि लश्कर के दरमियान अमीर के हुक्म से बगावत करने वालों की गर्दन को उड़ा दिया जाए। आपने वसीयत के लिए मोहलत चाही थी।
4: बैठ जाओ, बैठ जाओ।
7: मैं नहीं चाहता कि फजूल में तुम लोगों का खून बहाया जाए।
5: मुझे मरना गवारा है, लेकिन परसंदे

0: फातिमा के खिलाफ मैं तलवार कभी नहीं उठा सकता।
1: बेगैरत, तुमने तो अपनी बहन के कत्ल से भी खौफ नहीं खाया। तुम्हें आले रसूल के कत्ल से क्या शर्म? खुदा करे मैं उस जंग से पहले मर जाऊं।
2: मर जाओ, बाढ़ में जाओ, बाढ़ में जाओ, मर जाओ। 100 साल तक भी मैं तुम्हारे कत्ल का सोच नहीं सकता। 100 साल। ये मत सोचना कि मेरा दिल नरम हो गया। आजकल मेरी आरज़ो जनाबे औहद का एतबार जीतना है। वो चाह रहे थे तुम मैदान जंग में हाजिर रहो, बस तुम अच्छी तरह सोच समझ लो। अगर यहाँ से बचकर निकल गए तो नायला से कहना कि अपने बेगैरत चचाजाद भाई को मारने की वजह से उसने मुझे जाने दिया। भाग जाओ।

0: सिपाहियों फरार हो रहे हैं, पकड़ो, वो फरार हो रहे हैं।
1: चलो चलो पकड़ो उन्हें, कोई भी भाग नहीं पाए। चलो
2: पकड़ो उसे,
1: मत के जाने ना भाई।

अपने शबो रोज की कद्र समझो नायला, खुद से ही बैठो, उठो, रास्ता चलो, सो, अपने बच्चे का ख्याल रखो।

0: देखो कैसे लिपटा हुआ है, उसे आराम मिल गया है, सुकून से सो रहा है एकदम इत्मीनान से। जैसे ही नाव को काट कर जुदा करेंगे, खौफ और इज़्तिराब पूरे वजूद को घेर लेगा, जैसे जैसे तुम्हारा दिल तुमसे अलग होकर जमीन पर गिर पड़ा हो और खाक में तड़पने लगा हो। हिलाल के लिए शायद ऐसा हो, लेकिन आया के लिए फिक्र ना करें। मैंने उसे समझा दिया है, वह घर में है अपने दोनों बच्चों के साथ, सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह।
1: हातिब जान, तुमने कहा ना भूख लगी है, फिर खाना क्यों नहीं खाते? थोड़ा सा खाना खा लो, चलो मुंह खोलो, चलो खाओ मेरे हाथों से।
2: बेमजा है, मैं नहीं खाऊंगा, हटाओ इसे, यहाँ से निकलो।
1: ये क्या किया?
3: यहाँ क्या हो रहा है? अगर बच्चे को संभालना नहीं आता तो मुझे बोल देती, सारी चीजें फैला दी है। क्यों इतना रो रहे हो हातिब? क्या हुआ है? सुबह से शाम तक रोते रहते हो, गले में तकलीफ हो जाएगी। देखो कितना गर्म है, बुखार है बहुत तेज। अगर तुम्हें सहमत ना हो और दरवाजा खोल सकती हो तो खोल दो।
1: देखती हूँ।
3: क्यों खाना नहीं खा रहे हो? इस तरह मर जाओगे बच्चे।
2: काश के मर जाऊं, अपने अम्मी के पास चला जाऊं।
3: क्या करूं?
1: बानो, कोई कासिद आया है, वो बात करना चाहता है।
3: तुम इसका ख्याल रखो। फरमाइए।
4: सलाम अलैकुम। घर के किसी मर्द या बड़े से बात कराइए।
3: मैं बड़ी हूँ, फरमाइए।
4: जनाब के लिए मैं करबला से अहम खत लेकर आया हूँ, उन्हें देना चाहूंगा।
3: अभी वो घर में नहीं है, बाद में आना।
4: बाद में यानी कब? मुझे खत देने का हुक्म दिया गया है।
3: क्या कहा? खत कहाँ से लेकर आए हो?
4: करबला। मुझसे कहा गया है कि खुद उन्हें सौंपा जाए।
3: ना डरो, मैं उनकी जौजा हूँ, खत उन तक मैं पहुँचा दूंगी। फी अमानिल्लाह।
4: मेरा वजीफा है कि खुद उन तक मैं पहुँचाऊँ। खातून, मेरी बात सुनिए।
3: आहाद, तुम्हारा खत आया है।
2: शाबाशी हो, क्या मुसीबत आ पड़ी है हम पर, एक खुदा। आया ने सही कहा, 10 दिन से मैं यहाँ हूँ। अगर दोनों बच्चे मुझसे ये पूछे कि क्यों मेरी माँ को दफन किया है, अगर उन्हें मालूम हो जाए क्या मुसीबत उनकी माँ पर पड़ी है, तो मैं मर जाऊंगी। कुर्बान जाओ उस बेटी पर जिसने ना समझी में उस घर में कदम रखा। और बाहर नहीं है कि नाइला ने तुम्हें ऐसे बाप के घर में पनाह दी है।
5: बाबा घर पे नहीं है
2: ना? एक शख्स करबला से आया, मुझ में सब्र की ताकत नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद हिलाल की कोई खबर लेकर आया होगा, इसलिए मैंने ले लिया।

0: क्या लिखा है?
1: तुम्हारे दामाद इब्ने हनीफ का खून खलीफा के हुक्म की मुखालफत की वजह से जहाँ पर भी वो हो और जिस हालत में हो हलाल है, और उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद बिल्कुल ना की जाए।

काश कि मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं, आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं, यही कुम में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती।

0: अमान दे मुझे, अमान दे मुझे साकिब ने मुसा। मैं मामूर हूँ, आपकी हिफाजत के लिए आपके साथ हूँ।
1: मदीना का रास्ता मुझे बहुत तवील लग रहा था, जैसे कभी खत्म ही ना होगा। मुझे हुकूमती कासिद की खबर पहुंचाने से पहले मदीना पहुंचना था और बीबी को मुत्तला करना था कि एक गैर मुतवक्के सफर दरपेश है। मुझे इसलिए भी जल्दी पहुंचना था कि वो जान लें कि इस सफर में हम खुद उनकी हमराही करेंगे, इससे पहले कि हुकूमती कासिद उन तक कोई बुरी खबर पहुंचा दे।
2: आया जनाब। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बीबी कहाँ है?
2: आपके भाई अली इब्ने मूसा के घर में है, वहाँ दर्स दे रही हैं। सब खैरियत तो है?
1: कोई कासिद आया था दारुल हुकूमत से?
2: नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। कोई बुरी खबर है क्या?
1: तुम परेशान ना हो अबू असमा।
3: भाइयो,
2: अल्लाह खैर करे।
1: कासिम
4: भाई,
3: हमजा, इब्राहिम, देखो जनाबे इसाक आए हैं।

0: ये हमारे भाई मौला रजा का पैगाम है आपके लिए। हम सब भाई सफर में आपके साथ होंगे।
1: हाजियों को पहले ही मक्का से मर्फ की जानिब रवाना कर दिया है मैंने,
0: ताकि मैं आपके हमरा सफर करूं।
2: क्या कोई है इस घर में?
3: सरबराह कौन है इस घर का?
4: तुम्हारे बड़ों ने सिखाया नहीं कि बगैर इजाजत किसी के घर दाखिल नहीं होते?
3: इस हुकूमत के हुक्मनामे को किसके हवाले करूं मैं? इस हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज का दिन ढल न रहा होता तो मैं कल का इंतजार नहीं करता। वलीअहद की हमशीरा को कल दारुल हुकूमत का सफर अख्तियार करना है। कोई सवाल नहीं करेगा, फौरन तैयारी करो जाने की।

0: आप लोग अंदर जाइए, सलामत रहो।
1: शुक्रिया। पानी पानी,
2: ठहर जाओ, पानी अभी नहीं पिलाना इसे। जख्म से कपड़ा हटाओ, देखूं जरा।
0: बर्दाश्त करो मेरे भाई।
2: एक साफ कपड़ा ला कर दो मुझे।

0: मरहम बना लिया तुमने?
1: एक बार देख लीजिए।
0: ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसमें से कुछ और शामिल करो। बहुत ही मामूली से नमक का भी इजाफा करो इसमें और अच्छी तरह मिलाना।
1: अब क्या करेंगे?
0: तुम परेशान मत हो।
1: बहुत ज्यादा खून बह चुका है उनका।
0: जानती हूँ, लेकिन ठीक हो जाएगा।
1: मैं कोई मदद कर सकती हूँ? दवा बनाते हुए कोई जिक्र वगैरह नहीं पड़ती क्या तुम?
2: मैं अपनी वालिदा से तबाबत सीख रही हूँ, मुझे जादू टोना नहीं आता।
1: अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम मुतमइन तो हो ना कि जख्म के लिए यही मरहम बेहतर रहेगा?
2: बेहतर तो ये है कि किसी को जख्म लगाने पर मजबूर ना किया जाए।
1: तो फिर तुम क्यों अपनी जुबान से वार कर रही हो?

0: ने भाई हमजा के साथ अज़दवाजी रिश्ते के लिए मुंतखब किया।
1: मुझे बहुत खुशी है कि इस सफर में तुम बीबी के हमराह हो। मेरी बीबी का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम। सफर के लिए तैयार हैं? ये वालिदा ने भेजा है, सफर में काम आएगा आपके।
0: बहुत शुक्रिया, अंदर आइए।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम बेटा, खुश आमदीद।
2: तबीयत कैसी है आपकी?
1: शुक्र है अल्लाह का,
0: ये लीजिए।
1: बहुत शुक्रिया बेटा।
2: वालिदा ने कहा है कि अगर आप चाहें तो सफर पर चल सकती हैं हमारे साथ।
1: नहीं बेटा, ये हकीकत है कि मुझे बहुत याद आएगी तुम दोनों की, मगर मेरे अंदर सफर करने की हिम्मत नहीं है। मैं यहाँ खातून और मोहम्मद इब्ने अली की खिदमत में रहूँ अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। बीबी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरी प्यारी बेटी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मदीना में दोबारा मिल बैठेंगे, पूरा यकीन है मुझे।
0: अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, लेकिन उस वक्त मैं एक नातजुर्बाकार शागिर्दा नहीं रहूंगी जिसकी तबाबत में आसानी से खामी ढूंढी जा सके, बल्कि ऐसी तबीबा होंगी जिसने दारुल हुकूमत के माहिर तबीबों से तबाबत सीखी होगी और मेरी अपनी एक पहचान होगी
1: इंशाल्लाह। मेरे जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले।
2: आपके जिगर का टुकड़ा है और मेरी आंखों का नूर है।
1: अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे।
0: सफर एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब जो भी हो लेकिन खुदा हाफिजी की नागवारी से शुरू होता है, और सफर से एक दिन पहले की शब खुदा हाफिजी में गुजरी। एक भूपी की खुदा हाफिजी अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अली से, एक मौलमा की खुदा हाफिजी अपनी शागिर्द खवातीन से, और अपने जद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार से खुदा हाफिजी। बनू हाशिम में खूबी ये है कि जब तक वो जिंदा रहते हैं अपनी खवातीन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ते,

0: किस रास्ते से जाएंगे?
1: सहरा के रास्ते से जाएंगे।
0: सहरा के रास्ते से?
1: बिल्कुल।
0: वो तो खतरनाक रास्ता है।
1: खतरनाक है लेकिन मुख्तसर है।
2: सफर शुरू करें। रास्ता बहुत तूलानी है और दिन छोटे हैं। हमें फौरन रवाना होना है।
1: तूलानी सफर उन जखीम किताबों की मानंद है जिन्हें पूरा पढ़ना मुश्किल है। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफर खुशगवार भी हो सकता है और दुश्वार भी। ये सफर इस्तराब का सामना करेगा, आसानी या दुश्वारी को मुसाफिरों के सामने पेश करेगा और तरह तरह की फिक्रों को जन्म देगा, लेकिन नहीं मालूम कब क्या वाकया पेश आएगा। मुख्तसर लेकिन नाशनास रास्ते सफर के मामले को और पेचीदा करते हैं, लेकिन मुझे जल्दी पहुंचने का हुक्म मिला था।
3: एहतियात से, काफिले को यहां रोकना पड़ेगा। रेत का तूफान आ रहा है।
4: रेत का तूफान आ रहा है।
5: रेत का तूफान आ रहा है।

0: ऊंट के दूध की लस्सी सहरा में गर्मी के एहसास को कम करती है। आप लोग क्या हज से वापस आ रहे हैं? सहरा का रास्ता क्यों इख्तियार किया? ये तो बहुत खतरनाक रास्ता है।
1: ए बुजुर्गवार,
0: आप तो इनके साथ थे, ये रास्ता खतरनाक है कि आपको मालूम नहीं था?
2: क्या कह सकते हैं भाई, इस रास्ते के इंतखाब पे मजबूर थे।
0: क्या कहा, मजबूर थे? आप लोगों के साथ तो खवातीन और बच्चे भी हैं।
3: ए बादिया नशीन, क्या तुम हमेशा लस्सी के जायके को अपने गैर मरबूत सवालों से इसी तरह बदजायका करते हो?
4: हो सकता है कि हमें देर हो रही हो।
5: देर से पहुंचना बेहतर है बजाय इसके कि इस बयाबान में अपनी जानों को खतरे में डाला जाए।
6: रास्ते का तायुन करना हमारा काम है, आपका नहीं जनाब इसाक।
5: ये रास्ता थोड़ा तूलानी है लेकिन पुरअमन है, और उस रास्ते से बेहतर है जिसकी तजवीज हमें ये शख्स दे रहा है।
7: तूलानी होने की वजह से क्या वो शख्स इस रास्ते से जाने पर राजी हो जाएगा?
5: काफिला सालार हम हैं, इस सफर में वो हमारे साथ हैं। हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे जहाँ से हमारे भाई को ले जाया गया।
8: हम गैर मधु मेहमानों का क्या करेंगे? लगता है इन मामूरों के अलावा कुछ और लोग भी हैं जो हमारे काफिले के साथ साथ हैं।
5: वो मामून अब्बासी के जासूस हैं। जब तक मर्व में सब कुछ ठीक है हमें इनसे कोई खतरा नहीं। हमारी सफर के हवाले से परेशानियों को देखकर बीबी ने फरमाया कि हमें परेशान होने के बजाय सफर की इन जहमतों से इस्तेफादा करना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि जिस रास्ते से भी गुजरें वहाँ बयान हदीस और वाज़ो नसीहत की मजालिस का इनेकाद किया जाए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि दारुल हुकूमत से आए मामूरों की मौजूदगी में ये मजालिस कैसे मुनक्किद की जाए, और दूसरी तरफ बीबी के इत्मीनान की वजह से मुतमईन भी था। कई रोज़ो शब सफ़र में गुजरे हम बयाबानों सहराओं और सरसब्ज़ो शादाब इलाकों से गुजरते हुए जा रहे थे। हर रास्ते पर लोग हमें खुश आमदीद और खुदा हाफिज़ कहने के लिए मौजूद होते थे।
9: आज हम सब इस मर्द मोमिन के मेहमान हैं, शब में यहीं कायम करेंगे।
10: जितना मुमकिन हो इन मामूरों को मेहमान नवाजी में मसरूफ रखो।
5: हमने आपको जहमत में डाल दिया।
10: कैसी जहमत फरजंदे इमाम, आपकी तशरीफ आवरी भाई से मुसर्रत है। आप लोगों की बरकत से अल्लाह ने आज कई साल बाद हमारे इस कबीले को बेटी की रहमत से नवाजा है जो हमारे लिए खुशी का बाइस है।

0: कितना अच्छा हुआ कि आप आई। आज कितना मुबारक दिन है। मैं जानती थी और सबसे कहती थी कि ख्वाबो ख्याल इस कदर वाज़े और यकीनी नहीं होते। कितने सालों से मैं ये हसीन ख्वाब देख रही थी। काश के वालिदा जिंदा होती। एक वही थी जिनको यकीन था कि उनकी बेटी के मुकद्दस बीबी की ज़ियारत की आरज़ू ज़रूर पूरी होगी। वो कहती थी, इसमें कोई फ़र्क नहीं कि तुम उन्हें जागते हुए देखो या ख्वाब में, चाहे बुढ़ापे में देखो या फिर जवानी में। मुकद्दस बीबी का नाम चाहे मरियम हो या आसिया हो या फिर फातिमा, जब भी तुम उनकी ज़ियारत करो मेरा सलाम पहुँचा देना। मैं नहीं जानती थी कि आपका क्या नाम है, नहीं मालूम था कि आपकी ज़ियारत होगी या नहीं, मगर मुतमईन थी मैं, ये दिन ज़रूर आएगा, मुझे यकीन था इस बात का। आप पर मेरा सलाम, मेरी माँ का सलाम जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इस बच्ची का सलाम जिसकी विलादत आज ही हुई है। इसका नाम फातिमा रखा है, इसे कबूल फरमाए।
1: वो बहुत खुश थी उसकी बेटी की पैदाइश के मौके पर वो मुकद्दस बीबी के जिनकी ज़ियारत के लिए वो कब से बेचैन थी, आज वही उसके रूबरू खड़ी है और उसकी बेटी के कानों में अजान व अकामत कह रही है। और बीबी भी उस बच्ची का नाम फातिमा रखने पर खुश थी। दुख्तरे रसूलल्लाह हजरत फातिमा से मोहब्बत बीबी की मुस्कुराहट से जाहिर थी। देखते ही देखते मजलिस बयान हदीस में तब्दील हो गई और फिर बीबी ने रसूलल्लाह की चंद अहदीस का जिक्र फरमाया जिनमें औलाद अली से मोहब्बत और उसके अजीम अजर को बयान किया गया था। हम सब

0: बहुत खुश थे सिवाय एक शख्स के।
1: बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें खाने की, मेरे आगे से सारा गोश्त चुनकर खाए जा रहे हो।
2: खामोश हो जाओ, खाना भी सुकून से नहीं खा सकते तुम लोग। मैं सफर में गैर मामूली तब्दीली को महसूस कर रहा था। ये तय नहीं पाया था कि हम किसी नदी में गिरे पत्तों की तरह हैं, कि पानी जिस तरफ भी चाहे बहा कर ले जाए। रास्ते में जगह जगह अली इब्ने मूसा के हामी ग्रोहों की शक्ल में जमा हो जाते थे और जो चाहते कहते और सुनते थे।
3: इमाम मदीने में मौजूद नहीं है, ये मुख्तसर सा जुमला सुनते ही हमारे सफर की थकावट में कई गुना इजाफा हो गया था। जब तक घर का दरवाजा बंद नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुए हम। सवाल नामे को उनके हवाले किया और ये तय पाया कि जब इमाम मदीना वापस आ जाएंगे तब हम इसका जवाब लेने के लिए दोबारा आए। दूसरी बार नाउमीदी तो अपनी जगह थी, लेकिन हमें एक बात ने हैरान करके रख दिया कि इमाम अभी वापस नहीं लौटे थे, मगर हमारे सवालों के जवाब हमें मिल चुके थे। हमें उनके वापस ना लौटने की फिक्र भी थी और ये जानने का इश्तियाक भी कि आखिर किसने इन सवालात के जवाब दिए हैं और क्या ये जवाब सही होने पर इत्मीनान किया जाना चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन ये इस्तराब मदीना के मरकजी दरवाजे तक ही हमारे साथ रहा। जब हम पहुंचे तो इमाम को दूर से आते हुए देखा। अस्सलामु अलैका यबना रसूलुल्लाह, हमारी जाने आप पर कुर्बान, हम मदीने से नाकाम नहीं लौटे थे, इमाम की ज़ियारत की और मुख्तसर वक्त में जितना हो सका उनकी गुफ्तगू से फैजियाब हुए। हम खुश थे, लेकिन जब वो जवाब हमने इमाम की खिदमत में पेश किए तो हमारी खुशी में इजाफा हो गया। इमाम ने वो जवाब पढ़ना शुरू किए और हमारी मुस्तरिब नज़रें इमाम की मुतमईन निगाहों पर जमी हुई थी जब वो एक एक सतर को पढ़ रहे थे। और फिर इमाम ने हमारे परेशान लेकिन मुस्कुराते चेहरों पर निगाह डाली और फरमाया, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बाप बेटी पर कुर्बान जाए, बाप बेटी पर कुर्बान जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी बाप को अपनी बेटी पर ऐसे फख्र करते हुए नहीं देखा था। हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ऐसी बेटियां अता की जो आलिमा है।
0: बेटी तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। अस्मा, इसकी आंखों का रंग कुछ जर्द नहीं लग रहा।
4: जी मुझे भी लग रहा है। तुम्हारे पास कोई दवा है?
5: नहीं।
4: परेशानी की बात नहीं, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ अभी।
5: बहुत शुक्रिया आपका।
4: ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? ये तो कमजोरी की अलामत है। मेरे ख्याल से दूध और शहद इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
6: बिल्कुल, उसके पीने से माँ में ताकत आएगी।
7: मेरा सलाम हो रसूल अल्लाह के खानदान पर, औलाद जहरा का काफिला हमारे इस गांव के पास से गुजरे और हम मेजबानी से महरूम रहे, कैसे हो सकता है? अली इब्ने मूसा की हमशीरा के काफिले की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि आप लोग मर्व जा रहे हैं। मूसा इब्ने जाफर की जिंदाने हारून में मजलूमाना शहादत हुई और उनके बेटे अली इब्ने मूसा आज महल में मैसूर हो गए। अगर इमाम हुक्म दे तो हुकूमत के तख्त की बुनियादें इन जवानों की मदद से हिलाकर रख देंगे।
8: तुम में से कोई एक यहाँ आ जाए, जंग की मश्क करने में कैसा डर?

0: बस इतना ही लड़ सकते हो? ये काफिला तो तुम लोगों की हिफाजत में जा रहा है, कोई मामूली चरवाहा भी तुम लोगों को आसानी से लूट सकता है।
1: देखा आपने इब्ने मूसा, हमारा हर जवान 10 जंगजुओं से अकेला लड़ सकता है।
2: अल्लाह इनकी शुजात और महारत में और इजाफा फरमाए।
1: इन जवानों की तलवारें अल्लाह के दुश्मनों के खून की प्यासी हैं।
3: ये सब्र व मसलहत का दौर कब खत्म होगा जनाब इसहाक? आखिर मैदान जंग में कब उतरेंगे?
2: हम तो इस वक्त भी मैदान जंग में ही मौजूद हैं जवान,
3: तलवारें नियाम में रखकर,
2: इताअत करके अपने इमाम की।
3: मसलहत सुलह और मकाम के हुसूल में जंग कहाँ है, वजाहत कीजिए जनाब।
1: खामोश, तुम्हें मेहमानों की इज्जत और औलाद अली की हुरमत का ख्याल नहीं है?
3: वो औलाद अली जिन्होंने जुल्फिकार को नियाम में छुपा रखा है, क्या उन्हें अपनी हुरमत का ख्याल है?
2: लगता है कि तुम जंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं जवान। तलवार चलाना, नेजा उठाना और तीर को कमान से फेंकना तुम जैसे जंगजू के लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन बेहतर है कि पहले अपने नफ्से अम्मारा से जंग करें।
3: मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रहा जनाब।
2: काश इन लोगों को यह समझाया जा सकता कि जंग फकत जिदाल व क़िताल नहीं, तलवारों की गूंज ने इनको बहरा कर दिया है और तलवारों की चमक ने इनकी आंखों का नूर छीन लिया है। अब इन्हें जंग का कोई और रास्ता दिखाई ही नहीं देता, वो रास्ता जो इनकी जिंदगियों की जमानत बना।
4: अस्सलामु अलैकुम। जब से मुझे ये खबर मिली है कि आप तशरीफ ला रही हैं, मैं बहुत बेचैनी से मुंतजर थी आपकी। कई बार सोचा आपके लिए क्या बनाऊं मैं। बाग से ताज़ा फल तोड़कर लाई हूँ, कबूल कीजिए इन्हें। कई मर्तबा अपने गरीब खाने को साफ किया ताकि आपके शाया निशान बना सकूं इसे। अब इस नाचीज मेज़बान की एक छोटी सी ख्वाहिश है। सफ़र में आपने कई घरों को अपने बयान हदीस से मुनव्वर फरमाया है। कबीले की तमाम ख़वातीन आपकी मुंतज़र हैं। चाहती हूँ कि मेरे गरीब खाने को भी ये शर्फ़ बख्शें।
5: अब ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर ये सब एक या दो बार होता तो और बात थी, लेकिन हर बार मजलिसे बयान हदीस में विलायत अली के मौजू को ही बयान करना इसका कोई ख़ास मकसद हो सकता है। वो हमारे मंसूबे को नाकाम बना रही थी। वो जिन के दर्स व मजालिस को महदूद करने के लिए उन्हें मदीना से मर्व बुलाया गया था, अब वो उस काफिले में जो कि हुकूमती हिफाजत में ले जाया जा रहा है, रास्ते में आने वाली आबादियों में भी अपना दर्स व बयान जारी रखे हुए हैं।
6: खजूरे लाया हूं आपके लिए, मुंह मीठा कर लें।
0: ए बहादुर, कैसे हो तुम?
2: ये लो ताजा रोटियां, बीबी ने भिजवाई हैं।
5: मेरे लिए?
2: हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाई हैं।

0: आप सलामत रहे बाबा।
1: आ गई तुम बेटी, बगदाद नजदीक है। बीबी को जाकर बता दो कि उनके वालिद का मजार ज्यादा दूर नहीं है।
0: हिजाज में सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है, गोया आग बरस रही हो, लेकिन इराक के बयाबानों में बारिश और बादलों से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। इराक में हमारा आबाई घर रहने के लिए बेहतरीन जगह थी। मैं जानती थी ज्यारत का इश्तियाक बीबी के सफर की थकावट के एहसास को कम कर देगा।

0: वो दिल जो विलायत के हामी नहीं, वही दिल है गुमराह और बेसबात। और जरा ये मिस्रे समात कीजिएगा कि कैसे रसूल खुदा की वसीयत को भुला दिया गया। रसूल खुदा की वसीयत को भी भुला डाला जैसे हो एक आम बात। तवज्जो चाहूंगा, ये रस्में बशर है के बाद वफात, वसी ही चलाता है सब मामलात। कुछ लोग अहले बैत से दुश्मनी को दिल में छुपाए रखते हैं। जो दिल में छुपाए रहे दुश्मनी, अगरचे ये लगती है कुछ सख्त बात, वो सब हक पे होते अगर मुत्तफिक, तो उम्मत बिखरती ना यूं शश जिहाद।
1: तुम फौरन वहां जाओ और जाकर देखो कि वो खवातीन में क्या बातें कर रही हैं, कौन सी हदीस बयान कर रही हैं, किस सवाल का जवाब दे रही हैं और हुकूमत के खिलाफ क्या बातें कर रही हैं। जो कुछ वहां सुनना लफ्ज ब लफ्ज मुझे आकर बताना, बगैर किसी कमी बेशी के, बहुत एहतियात से। चलो जाओ अब।
2: मैं बहुत खुश हूं कि अपनी जिंदगी में इस वहदत का और आले रसूल की वली अहदी का ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है मुझे। अब खून खराबे और इख्तलाफात का दौर खत्म हुआ, कैदोबंद का खौफ और हिरास नहीं रहा। अब्बास हो या फिर अली, चाहे चचा हो या चचा जाद भाई, दोनों ही रसूल अल्लाह के खूनी रिश्ते हैं। तमाम इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं।
3: बीबी पर उस खातून की साजिश आमेज गुफ्तगू नागवार गुजरी। उन्होंने अपने जद रसूल अल्लाह से हदीस नकल फरमाई और कहा कि उस औरत की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को दूसरों के बराबर करार ना दिया जाए। और हजरत फातिमा जहरा की एक हदीस का जिक्र किया जो नस्ल दर नस्ल औलादे अली से रिवायत हुई थी।

0: तुमने उसे फरामोश कर दिया है जो रसूल अल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया था, जिस जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसका मौला है। और ये भी फरमाया कि अली को मुझसे वही नस्बत है जो हारून को मूसा से थी।
1: तुमने हमारे दिलों को तस्कीन बख्शी, अल्लाह तुम्हारे वालिद के दर्जात बुलंद करे।
2: वालिद कहा आपने? उस पर अल्लाह अजाब नाज़िल करे।
1: तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने बाप को बद्दुआ क्यों दे रहे हो ऐ शायर?
2: क्योंकि उसके करतूत से वाकिफ हूं मैं। मैं शाहिद हूं कि वो जालिम शख्स फर्जंद रसूल को, जिनके मजार की आप ज़ियारत करने के लिए आए हैं, दर्दनाक अज़ियतें देता रहा। आखिरकार फर्जंद रसूल शहीद हो गए। उस वक्त मैं बहुत कम सिन था। मैंने खुदा की बेहतरीन और बदतरीन मखलूक को एक साथ देखा है।
1: थोड़ा ख्याल करो ऐ भाई, हो सकता है कि तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसे अफराद मौजूद हों जो तुम्हारी बातें हजम ना कर सकें।
3: अल्लाह आपकी ज़ियारत कबूल करे। आप चाहें तो मज़ीद रुक सकते हैं यहाँ। बगदाद में मुझे अपने एक देरीना दोस्त से मुलाकात करने के लिए जाना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ रुकने के लिए ज़्यादा वक्त मिल सकेगा। तुम्हारा क्या नाम है ऐ शायर गुमनाम?
2: कशा जेम।
3: मुनाफिकाना शायरी में काफ़ी महारत हासिल है तुम्हें। तुम्हारा नाम याद रहेगा मुझे।
2: उनके बारे में काफी सुन रखा था।
1: एक जगह जमा ना हूं।
2: यह भी सुना था कि उन्होंने कैद खाने में बहुत से दारोगों को हक की तरफ रागिब किया। और यह भी सुना कि वो हारून और रशीद की हुकूमत के खिलाफ कयाम करने का इरादा रखते थे। और यह भी कि वो रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं। मैंने अपने नाना बिन शाहक के कैद खाने में जो देखा, उसे अगर मैं एक लफ्ज में बयान करना चाहूं तो वो लफ्ज होगा इबादत। लगता था कि उनका माबूद कोई और है और हमारा कोई और। हमारी सोच से बढ़कर वो अल्लाह की इबादत किया करते थे। वो तवील सजदे करते थे और अपने हाथों को दुआ के लिए बुलंद करते थे। उनको देखकर मुझे अल्लाह से एक खास लगाव हो गया। लेकिन मेरा बाप बहुत संगदिल था। उसका दिल पत्थर से ज्यादा सख्त था। वो मूसा इब्ने जाफर के गुज़िश्ता दारोगों से बहुत मुख्तलिफ था। पहले वालों की तरह वो इस जुर्म के इर्तकाब से मुनसरिफ नहीं हुआ और उसका दिल और हाथ हाकिम की तरफ से रसूलुल्लाह के फर्जंद की जिंदगी के चिराग को गुल करने के फरमान के इजरा पर बिल्कुल भी नहीं लर्जे।

0: क्या तुम जानते हो कि जिस काफिले की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है वो जिन इलाकों से भी गुजरता हुआ आ रहा है वहाँ के लोग काबू से बाहर होते जा रहे हैं। क्या मामून अब्बासी को इस बात की खबर है कि तुम वली अहद की हमशीरा को किस रास्ते से लेकर जा रहे हो?
1: वो बेखबर नहीं।
0: आज तुमने देखा बगदाद में कुरैश के कब्रिस्तान में उस यहूदी जादे कशा जिम ने क्या किया? क्या ये भी बताया है तुमने मामून को? ये खतरनाक रास्ता जो मुहिबान औलादे अली से भरा हुआ है किसका इंतखाब है? इस खबर को भी जितना जल्दी हो सके तफसीली तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाओ। खबरदार कर रहा हूं मैं।
2: यह पैगाम हमारे मौला अली इब्ने मूसा तक पहुंचा दीजिए। लिखने वालों के नाम इसमें तहरीर नहीं किए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला पेश आए तो उन अफराद की जानें महफूज रहें। मामून अब्बासी ने अपना हकीकी चेहरा आयां कर दिया है। कोई भी काफिला दारुल हुकूमत नहीं पहुंच रहा। बहुत से मोमिनीन जो अली इब्ने मूसा से मुलाकात का इरादा रखते थे वो दारुल हुकूमत मर्व नहीं पहुंच पाए। हुकूमत के शदीद रद्द अमल के नतीजे में बहुत से हाशमियों ने जाम शहादत नोश किया और बाकियों की कोई खैर खबर नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
3: ये एक और हुकूमती पैगाम आया है।

0: ये सफर अब मूसा इब्ने जाफर के फर्जंदान से क्या चाहता है हमजा? आखिर क्यों इस खानदान के नसीब में अपने वतन से दूरी लिखी है? वालिद गरीबुल वतन होकर बगदाद में शहीद हो गए, उनके फर्जंद को मर्व में रहने पर मजबूर किया गया। और फिर हुकूमती पैगामों का यह सिलसिला। इस बार क्या नया होने जा रहा है हमारे साथ? आधी रात गुजर चुकी है, सर्दी भी मजीद बढ़ गई है।
1: मुझे तो इनकी खवातीन और बच्चों की फिक्र है, इनका मजीद यहाँ ठहरना बेहतर नहीं है।
0: मैं जाकर कहती हूँ।

0: बीबी जान, जानती हूँ कि अपने वालिद की कब्र से जुदा होना आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सर्दी की वजह से ज्यादा नहीं ठहर सकते हम यहाँ।
1: बीबी, बेहतर होगा आप कुछ देर आराम कर लें।

0: हम हाकिम वक्त के वली अहद के सगे बहन भाई थे, लेकिन इसके बावजूद हमारी परेशानियां और मुश्किलात कम नहीं थीं। और इस परेशानी की एक वजह यह थी कि हमारे किसी भी काफिले को मर्व पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। बीबी भी इस हवाले से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि हम ये बात जान चुके थे कि मामून अब्बासी की हुकूमत के दौरान हर इकदाम गैर मामूली है।
1: उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा गुजर रहा होगा। कैसा गुजर रहा है मोहतरम इसहाक? आपके लिए शेर पढ़े जाते हैं, कुर्बानी की जाती है आपके लिए, इस्तकबाल और खुदा हाफिजी हो रही है, और फिर भी इतने दुख भरे अंदाज से दश्त तो बयाबान को तक रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए इस सफर में।
0: कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर उस सफर पे हम खुश कैसे हो सकते हैं जिस सफर के लिए हमें मजबूर किया गया है?
1: मकाम और इख्तदार के लिए मजबूर किया जाना काश हमें भी नसीब हो जाए।
0: लगता है कि आप इरादा कर चुके हैं कि हकीकत से मुंह फेर लिया जाए। अल्लाह आपको हकायक देखना नसीब करे।
1: अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उससे शिकायत है मुझे। क्या मेरा हक यही था कि मैं इस तरह काफले के हमरा आऊं और हर रोज आपकी नफरत भरी निगाहों का सामना करूं, और दूसरी तरफ मेरे अपने लोगों की मेरे साथ बदसुलूकी? क्या क्या कुछ सहना पड़ रहा है मुझे। खैर छोड़िए, आपसे दिल की बातें करने का कोई फायदा नजर नहीं आता मुझे।
0: ठीक है, जाइए, मगर ये बात जहन में रहे कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर होता है हमारे लिए। कैसी नफरत! आपकी रोटी में खजूरें डालकर आपके सामने पेश किया जाता रहा, उसमें नफरत थी या हमराही सफर की मिठास थी? अल्लाह ने आपको मुस्तहिक समझा है, तभी दोनों रास्तों को आपके सामने वाजे कर दिया है। ये तौफीक हर किसी को नसीब नहीं होती। आपको इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है।

पहाड़ों और वादियों की शदीद सर्दी के जिससे हमारा पहली बार वास्ता पड़ा था, हमारे लिए वबाले जान बन गई थी। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि हुकूमत के भेजे हुए मामूर अचानक गायब हो गए और मशकूक अफराद की आमदोरफ्त शुरू हो गई। ये अजीब और गरीब इस्तराब और वहशत की कैफियत हड्डियों तक पहुँचने वाली सर्दी से ज़्यादा तकलीफ देती।

0: क्यों, क्या हुआ? मुस्तकबिल की तबीबा का जौक और शौक क्यों मान पड़ गया? आगाज़े सफर वाली खुशी कहाँ गई बेटी?
1: ये सफर अजीब है बाबा, हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरा इश्तियाक उतना ही कम होता जा रहा है।
0: किस बात की परेशानी है तुम्हें? मैं साथ हूँ, तुम्हारा शौहर साथ है, और साथ में अरबी घोड़ों पर सवार बनू हाशिम के शमशीर जन है जिनका कोई मुकाबिल नहीं। घबराने की कोई बात नहीं बेटी।
1: मेरा दिल परेशान है, ये सफर बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा मैंने तसव्वुर किया था। पहले मुझे ये लगता था कि आप मामून अब्बासी को बिला वजह ही चालाक हुक्मरान और उस हुकूमती दावतनामे को एक साजिश समझ रहे हैं। मैं समझती थी कि आप इस सफर की अहमियत से ठीक तरह वाकिफ नहीं है। आप जानते हैं ना कि मुझे मर्व के कुतुबखानों और तिब्बो तबाबत के मराकज़ जाने का कितना शौक था, और दारुल हुकूमत में उस इमारत को भी देखने का शौक था जिसे हमारी सुकूनत के लिए मखसूस किया गया है। और यहाँ क्या है? रेत पत्थर और आलूदा हवा के अलावा और तो कुछ भी नहीं है।
0: अच्छा, तो रेत और पत्थरों ने तुम्हें मायूस कर दिया। परेशान मत हो, पहुंच जाएंगे।
1: मैं ऐसा नहीं कह रही। देखें, यहाँ कोई भी खुश नहीं है। लगता है जैसे खुशियाँ हमारे लिए है ही नहीं। बीबी भी सफर से परेशान है। ये हुकूमती मामूर अचानक गायब हो जाते हैं और कोई भी कहीं से भी जाहिर हो जाता है। हमजा और इसहाक जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ये वो सफर बिल्कुल नहीं है जो मैं समझ रही थी बाबा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। ये कैसी दावत है जिसके लिए हमें इतनी जहमतें और असियतें उठानी पड़ रही हैं?
0: अब अकल आई है तुम्हें? जब ये हकीकत तुम्हारे सामने वाजे हो ही गई है तो अब पहले से ज्यादा बीबी का ध्यान रखना। बीबी की हिफाजत अहम है। मैं नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी की खिदमत गुजारी के बाद अपने मौला रजा की अमानतदारी में किसी कोताही पर शर्मिंदगी उठाऊं।

0: बाबा जान।
1: अल्लाह आपको सलामत रखे बाबा जान। बीबी कह रही है कि हम यहाँ कयाम करेंगे। वो चाहती है कि यहाँ की खवातीन के लिए मजलिस हदीस व नसीहत का इंतजाम किया जाए।
2: उनका हुक्म सर आंखों पर।
1: मैं बहुत परेशान हूँ। किसी की हिफाजत आसान काम नहीं, वो भी किसी ऐसी हस्ती की हिफाजत जो इस कदर अहम और महबूब हो, तो फिर इस इज़्तिराब और बेचैनी का होना फितरी अमल है। हमारा ये सफ़र तो अजीबोगरीब वाकयात से भरा हुआ है। सफ़र का तूलानी होना, दूरी और उदासी, कभी अपनों और कभी गैरों के साथ माशरत, ये सब जंगजू मर्दों के जिस्म रूह को भी थका देता है। मैं परेशान हूँ। मैं बीबी को ऐसी रंजीदा हालत में देखकर गमज़दा हूँ। एक अरसे से ज़मीन व आसमान मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सफ़र दुखों और तकलीफ़ों से भरा हुआ है।
3: कल की रात आपने कहाँ बसर की जनाब?
4: आपकी खातिर खुद को मैंने काफले से दूर रखना चाहा।
5: ये जो नामालूम लोग हमारे काफले के साथ साथ हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं?
4: नामालूम कौन है? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा।
3: अच्छा,
6: खुश आमदीद। कुछ दिनों से मैं बहुत बेसब्री से आप लोगों की मुंतजर हूँ। मेरी दावत कबूल करके मेरे गरीब खाने को इज्जत बख्शे। हलवा बनाकर लाई हूँ मैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये बीबी की खिदमत में पेश कर दूँ।
4: मुंह मीठा कर लें जनाब इसहाक, बहुत खुलूस से बनाकर लाई है।
3: अल्लाह आपका खुलूस कबूल करे। हमजा
5: जी भाई,
3: इन खातून को बीबी के पास ले जाएं।

0: ठीक है।
1: आपके आने की खुशी में मैं ये हलवा बनाकर लाई हूँ, आप कबूल कर लेंगी तो इज्जत अफजाई होगी मेरी, थोड़ा सा चख लीजिए।
2: क्या तुम जानते हो कि क्या कर रहे हो नादान?
3: अस्मा, अस्मा, अस्मा!
4: क्या बात है हमजा, सब खैरियत तो है?
3: मैं नहीं जानता, लेकिन बेहतर है कि कोई उस हलवे को ना खाए।
5: क्या हुआ हमजा?
3: उस बूढ़ी औरत के बेटे को मामूर से सिक्के लेते देखा मैंने। मैं भी नहीं जानता कि क्या हुआ है, मुझे शक हुआ तो इन्हें आकर मना किया।
2: तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी की गई गलतियों से सीखना चाहिए?
6: शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
5: मैं अब तुम्हारा मातहत नहीं हूं।
2: मामून अब्बासी की मकाराना चालों से मुझ जैसा तजर्बाकार और वफादार सिपाही भी महफूज नहीं था। मैंने उस शख्स के साथ अहदे वफा बांधा था जो दूसरों को क्या अपनों को भी माफ नहीं करता। एक मामूरियत के बाद दूसरी, और इसके बारे में मैं बस इतना जानता हूं कि यह अब्बासी हुकूमत के लिए मेरी जिंदगी की आखिरी मामूरियत होगी।
7: अगर कोई चाहता कि हमें किसी मुश्किल में डाले और उस पर इल्जाम भी ना आए तो वो क्या करता? वही जो मामून अब्बासी हमारे साथ कर रहा है।
5: मुझे नहीं लगता कि हुकूमत के सिपाहियों में इतनी जुर्रत है कि वो वलीहद के खानदान के काफिले पर हमला कर सकें, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मामून अब्बासी की साजिशें बेनकाब हो जाएंगी, और उसने जो दोस्ती का ढोल पीटा है वो तबले जंग की सदा में तब्दील हो जाएगा। जैद, आप काफिले के पीछे कुछ फासले पर साथ आए। कासिम, आप पहाड़ों और बुलंदियों पर नजर रखेंगे। हमजा, आप जाफर के साथ हमारे काफिले के आगे चलेंगे। अगर कोई मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन खबर करेंगे। मदीना से यहां तक नामालूम और मख्फी अफराद हमारे काफिले का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, कभी पहाड़ों में, कभी नखलिस्तानों में, कभी मैदानों और बयाबानों में। लेकिन मुझे इससे बढ़कर हुकूमत की तरफ से इस साजिश का डर था कि कहीं वो किसी हादसे का सहारा ना ले, जैसे किसी पहाड़ से बड़े पत्थर का गिरना, खैमों में आग का लग जाना, या फर्जी राहजनों के जरिए हम पर हमला करवाना वगैरह, जिसके बाद हुकूमत खुद को इस सारे मामले से मुबर्रा करार दे।

0: दीदी बीमार हो गई है और मेरी किसी भी कोशिश से खातिर खा नतीजा हासिल नहीं हो रहा। शायद ये इसहाक इब्ने मूसा के तज़क्कुर की वजह से है। उन्होंने जब से कहा है कि वो ख़तरे को महसूस कर रहे हैं और हमें बीबी का पहले से ज़्यादा ख्याल रखना होगा, तब से हर सदा पे मेरा दिल लरस उठता है।
1: हमजा लौट आया है।
2: दुनिया मेरी सोच और तवक्को से कहीं झूठी थी। पहले मैं सोचता था कि ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं, लेकिन मैं अब्बासियों के अलावा किसी और के लिए तलवार नहीं चला सकता। मगर यहाँ हमरा ही ये सफ़र की खजूरों की मिठास अपना काम कर गई और मैंने अब अपने ही सबका साथियों के हाथों ज़ख्मी बदन के साथ अपने हम काफिला की जानों की हिफाजत की खातिर तलवार उठाई है।
3: ये आपके साथ क्या हुआ है?
4: मुझे माफ़ कीजिएगा जनाब इसहाक, हक को पहचानने में देर हो गई, बहुत देर। आपकी और आपके लोगों की जानें महफूज नहीं है। वो किसी भी सूरत इस काफिले को सही सलामत मर्व नहीं पहुंचने देंगे।

0: मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। कासिम, जैद, इब्राहिम, आप लोग मेरे साथ चलें। हमजा, आप बीवी और दीगर खवातीन को लेकर किसी पुरअमन इलाके की तरफ चले जाएं। याकूब, हमजा के साथ जाएं आप। जल्दी करें।
1: हमारा क्या होगा?
0: बेहतर होगा कि आप काफिले से कुछ फासले पर रहें। आपकी हिफाजत के लिए हमजा साथ जाएगा आपके।
2: हमारे भाई और इमाम रिजा आपके मुंतजर हैं, उन्हें हमारा सलाम कहिएगा। मैं आकबत खैर का मुंतजर था, मुझे जर्रा बराबर भी मौत का खौफ नहीं था। हम बनू हाशिम को दुनिया में शहादत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी अधूरी रह जाए। और लोग मेरे बारे में ये कहें कि इसहाक ने कहीं पर कोई कोताही की है, मेरे पास सबसे कीमती शय मेरी जान थी, जिसे मैं मैदान में ले आया हूं।

0: warisan kaki. मोहम्मद पर कितना सुलटाया है।
1: मैंने कहानियों में भी कभी इस तरह के रहस्यों के बारे में नहीं सुना था। उनमें हर कोई तजुर्बाकार और तरबियत याफ्ता जंगजू की तरह था।

0: मुझे हर किसी पर शक हो रहा था, यहाँ तक कि उस बूढ़ी औरत पर भी जो इस दर्दनाक हमले से पहले हमारे लिए हलवा लेकर आई थी। मुझे ये भी डर था कि दुश्मन हमारी इन शहादतों के बाद भी अगर खामोश ना बैठा और उसने दोबारा किसी भी वक्त हम पर हमला कर दिया, नहीं मालूम कि हम मर्फ पहुंच भी पाएंगे या नहीं। लगता है बाकी का सारा सफर इस तराब और बेयकीनी की कैफियत में गुजर जाएगा। बीबी पूछ रही है कि कुम तक कितना फासला है।
1: मेरे ख्याल में
2: तकरीबन 10 फरसख।
0: मैंने शहर कुम का नाम पहले से सुन रखा था। मेरी वालिदा ने इमाम जाफर इब्ने मोहम्मद से रिवायत किया था कि कुम अहले बैत का हरम है। बीबी कह रहे हैं कि कुम तक 10 फरसख का फासला है। जैसे ही मैंने बीबी को कुम का फासला बताया, उन्होंने फौरन काफले से अलग होकर कुम की तरफ जाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद एक छोटे से काफले के बायस मेरे दिल को कुछ सुकून मिला।
3: मेरा सलाम हो अहले बैत इस्मत और तहारत पर। बहुत शर्मिंदा है बीबी, अल्लाह गवाह है कि हमने कहीं भी सुस्ती से काम नहीं लिया। हम लोगों को जैसे ही आपके काफले की खबर मिली, हम उसी वक्त रवाना हो गए। हमें अपने गम में शरीक समझे। मर्फ तक पहुंचने में बहुत दिन लग जाएंगे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप कुछ दिन कुम में हमारी मेजबानी कबूल फरमाएं।
0: फिर से इत्मीनान और इस्तराब यकजा हो गए। इत्मीनान इसलिए कि कुम का नाम सुनते ही बीबी के रंजीदा और गमजदा चेहरे पर इत्मीनान नजर आया, और इस्तराब इसलिए कि मालूम नहीं कुम पहुंचने तक हमारे साथ क्या होगा।
4: कुम वालो, बीबी का काफला पहुंच गया है। दुख्तरे मूसा इब्ने जाफर का काफला पहुंच गया है। खुशामदीद, खुशामदीद मूसा इब्ने जाफर की दुख्तर, खुशामदीद। आपने कुम वालों को यह शर्फ बख्शा, आप पर हमारा सलाम।
5: हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। मर्व में हमारे मौला रजा की खिदमत में पहुंचने तक काफी रास्ता बाकी है। आप सेहत याब होने तक यहीं कुम में कयाम फरमाइए और इस शहर वालों को अपनी खिदमत का मौका दीजिए।
6: मेरा सलाम कबूल कीजिए। हम सब आपके गम में बराबर के शरीक हैं। कुम के तमाम मर्द और खवातीन आपसे ताज़ियत करना चाहते हैं और आपकी सलामती के लिए दुआ गो हैं।
0: इन दिनों कुम में ठहरने का इंतखाब बिल्कुल सही था। अपनी माँ की नसीहत और जनाब इसहाक शहीद की वसीयत के मुताबिक मैं खुद को बीबी के मुहाफ़िज के मुकाम पर देख रही थी। एक जगह ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती थी। बीबी हर हाल में, चाहे खलवत में हो या खवातीन से मुलाकात में मसरूफ हो, जिक्र इलाही को कभी फरामोश नहीं करती थी, और मेरी इबादत इन दिनों बीबी की आयादत करने में थी। दवा बनाना और बीबी की सेहतयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश करना।
7: अस्मा, बीबी देखो क्या हुआ है।
8: बीबी क्या हुआ है आपको? तबीबा, तबीबा को फौरन बुलाइए। थोड़ा पानी दो मुझे।
7: तबीबा, या अल्लाह क्या हो गया इन्हें? जल्दी से देखिए इन्हें आके।
8: पुरसुकून हो जाएं। मेहरबानी करके आप सब बाहर चली जाएं।
7: चले। या अल्लाह अपना करम करना।
8: ये लो बेटी, जो तुमने कहा था वो सब ले आई हूँ। इतनी घबराई हुई क्यों हो तुम?
0: काम कर रही हूँ, घबराई हुई नहीं हूँ मैं।
8: काम कर रही हो?
0: इस तरह से क्या हो गया?

0: और कैसे होता है काम? मैं यहाँ अपने घर से मीलों दूर, शौहर शहीद हो गया परदेश में, और कैसे काम करूँ कि आप राजी हो जाएं, बताएं मुझे।
1: अल्लाह तुमसे राजी हो मेरी बेटी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि तबाबत सब्र और तहमुल का काम है। इस परेशानी और अफसरदगी में तुम दवा तो बना सकती हो बेटी, लेकिन शिफा नहीं दे सकती। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए।

0: क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो मौजजा करना चाहते थे, मदीना की बेहतरीन तबीबा के शिफा बख्श हाथ बनना चाहते थे, चाहते थे जख्मों और तकलीफों को कम करो, फिर तुम इतने नातवां क्यों हो गए? आखिर इस बीमारी का इलाज मुश्किल क्यों है? बेवकत हाथों, काश तुम ना होते, तुम्हारे होते हुए मैं कुछ ना कर पाऊँ, ये ज्यादा हसीयतनाक है मेरे लिए।
1: अगर आपके हाथ थक गए हैं तो मैं मदद कर दूँ आपकी?

बीमारी भी रहसनों से कम नहीं है। खामोशी से आगे बढ़ती है, फिर मुहासरा कर लेती है। जब ऐसा लगता है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा तो सामने खड़ी नजर आती है। हम तबीबों से दवा और अल्लाह से शिफा तलब करते रहे, लेकिन बीमारी जाने का नाम नहीं ले रही थी।

0: और उस दिन से अल्लाह की पनाह जब तबीब दवा और इलाज के बजाय नहीं जानते शायद या दुआ करें जैसे अल्फाज की तकरार करें।
1: मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, जितना इल्म तब मैंने सीखा है वो सब इस्तेमाल कर लिया है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं जानता कि उनकी बीमारी की असल वजह मुझ पर जाहिर क्यों नहीं हो रही।

0: बीमारी का कोई तोड़ नहीं हो रहा मूसा।
1: तो इसके इलाज के लिए मजीद कोशिश करेंगे हम।
0: हर इलाज आजमा चुके हैं।
2: बीबी के सिरहाने कुरान पढ़ने वाली का इंतजाम कीजिए। तबीब ने जवाब दे दिया है, किसी के बस की बात नहीं है।

0: काश कि मैं पहले ही बीवी से पूछ लेती कि मैं यहीं ठहर जाऊं और आपके फिराक में अश्क बहाऊं, या मदीने की तरफ लौट जाऊं और जहां कहीं भी मुमकिन हो आपके सफर की हकीकत को बयान करती रहूं, आपके पास ही ठहर जाऊं और अपनी माँ से जुदाई को बर्दाश्त करूं, या फिर अपनी माँ के पास चली जाऊं और आपसे दूरी का गम सहूं, यही कुम में आपके कब्र मुबारक की मुजावर बन जाऊं और आपके जायरीन की खिदमत करूं, या आपकी सफीर बनकर मदीना चली जाऊं। ऐ काश मैं पहले ही बीबी से पूछ लेती।
1: ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इमाम अली इब्ने मूसा रिजा अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी साद अशरी को ज्यारतनामाए हजरत बीबी फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा देकर कुमुल मुकद्दिसा भेजा और उस जमाने से लेकर कयामत तक आने वाले जायरीन के लिए उस ज्यारतनामे को वसीलाए मारफते हजरत फातिमा मासूमा करार दिया।